FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 42 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर

0: उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ए रघुवीर, आपसे बारंबार विनती है, आप सदैव हम पर कृपा बरसाते रहें।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना मुकेश, नरेश मल्होत्रा, सुधा सिंह, विजय सिंह, हरिओम शरण और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: शोध मन का वह भाव है जिसके आ जाने से किसी बात का बदला चुकाया जाए, अथवा यूं कहें कि वह काम जो किसी बात का बदला चुकाने के लिए किया जाए। ऋण चुकाने के अर्थ में ऋण शोध का प्रयोग तो मिलता है। शुद्धता वाचक इस पवित्र पावन शब्द में चुकता करने का भाव कालांतर में विकसित हो गया। फिर वह चाहे ऋण चुकाना हो या बदले में किसी पर घातक आक्रमण कर प्राण लेकर ही चुकता करना हो। महाभारत में पांडवों में से भीम की यह उक्ति कि वह दुशासन का रुधिर पी जाएगा, इसी भाव को व्यक्त करती है। महाभारत के उद्योग पर्व में बदला लेने के भाव का संकेत इस प्रकार मिलता है। बुद्धिमान पुरुष का अनिष्ट करके इस विश्वास पर निश्चिंत होकर न बैठे रहो कि मैं दूर हूँ। बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती हैं। सताए जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। प्रतिशोध का भाव आना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब कोई मनुष्य दूसरे की मानहानि करे तो उसके बदले में वह उस समय तक प्रतीक्षा करता है जब तक वह उसके लिए उपयुक्त शक्तिशाली न हो जाए। जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हुए हत्याकांड

0: का बदला उस बालक ने वर्षों बाद लिया जो उसको देख रहा था। तुलसीकृत रामचरितमानस के लंका कांड में प्रतिशोध का भाव ही तो रावण के मुख से इस प्रकार कहलवाया है, निसिचर सुभट सकल संहारे, कुंभ कर्ण घन नाद ही मारे, आज कराऊं खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले, आज बैर सब लेऊं निबाही, जोरण भूमि भानि नहीं जाही। संस्कृत भाषा में इस अर्थ में प्रतिकार शब्द का प्रयोग ही मिलता है। अब इन दोनों का प्रयोग मिलता है। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के मौके पर एक क्रांतिकारी कवि ने अपने मनोभाव इस प्रकार व्यक्त किए, इतिहास कहेगा हमने गिर गिर कर अनेक उत्थान किए, क्या कोई करना सीखेगा जितने हमने बलिदान किए, अब भी अनेक माँ के सुपूत फिरते अपूर्ण अरमान लिए, प्रतिशोध एक प्रतिशोध मात्र ज्वाला से जलता प्राण लिए। निबंधकार बेकन ने चाहे प्रतिशोध के भाव को जंगली न्याय कहा हो, पर परिस्थितिवश प्रतिशोध का भाव पैदा हो जाना स्वाभाविक है, पर प्रतिशोध का कहीं अंत नहीं होता। अतएव मानव को प्रतिशोध के भाव से बचना ही श्रेयस्कर है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम में विचार प्रतिशोध का भाव, आलेख कैलाश चंद्र भाटिया का था और वाचन स्वर था पुष्पा शर्मा का। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस कांड।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थीं, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में परोया था श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी कार्यक्रम 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय रहेगा खरीफ फसल में जल प्रबंधन और वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत जी। आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले प्रश्न गीत। ढाई मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

इकतीस मिनट पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे कवि गोष्ठी, राष्ट्रीय कवि संगम हाथरस द्वारा प्रायोजित कवि गोष्ठी पावस। प्रतिभागी कलाकार कवि होंगे अनिल बोहरे, मनु दीक्षित, पूरन चंद्र, चैतन्य प्रकाश उपाध्याय। 8:30 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ पुराने गीतों का। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता कार्यक्रम ब्रज का पर्यावरण एवं वन संपदा का वैभव। वार्ताकार डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल होंगे। कार्यक्रम आबोहवा सुनेंगे आप 9:25 पर। 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ब्रज दर्पण। सुनेंगे अपना फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 11:30 पर आप सुनेंगे

नौटंकी नाग पंचमी, लेखक रामजी लाल भट्ट और प्रस्तुति होगी TN शर्मा की। 12 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे व्हाट्सएप संदेश पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS का। बजकर 15 मिनट का समय होगा बहनों के कार्यक्रम का, कार्यक्रम बनता लोक का। आज चर्चा का विषय रहेगा श्रावण मास में सोमवार का महत्व, नाग पंचमी और विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे सावन में भक्त बने योगी। तो बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। 2:30 पर आप आनंद लेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, पौधों की समस्त जीवन क्रिया और वृद्धि के लिए पानी आवश्यक है, परंतु आवश्यकता से अधिक और कम दोनों ही परिस्थितियां पौधों के लिए हानिकारक होती हैं। जल प्रबंध का कार्य वर्षा जल के पृथ्वी पर आने से ही शुरू हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक फसल उत्पादन के लिए इसका उपयोग नहीं हो जाता। जल प्रबंध से हमारा आशय है कि पौधों की उचित वृद्धि और पैदावार के लिए फसल बोने से लेकर दाना बनने तक आवश्यकता के अनुसार मिट्टी में नमी की पूर्ति करना, चाहे वह वर्षा के जल से हो या सिंचाई के द्वारा। विभिन्न फसलों की जल मांग अलग अलग होती है। यहाँ पर हम खरीफ की प्रमुख फसलों की चर्चा करेंगे जिनकी जल मांग तथा संभावित कम से कम सिंचाई संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। जहाँ तक खरीफ में धान की फसल का सवाल है तो इसको 150 से 180 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है और इसको 5 से 10 सिंचाइयों से पूरा किया जा सकता है। मक्का के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर पानी, 3 से 4 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं। बाजरा के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर पानी और 1 से 2 सिंचाई से इसको पूरा करते हैं। ज्वार के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर पानी, 2 से 3 सिंचाई इसमें देनी होती हैं। मूंग और उड़द 30 से 40 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है इनके जीवन काल के लिए और 1 से 2 सिंचाई करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ये भी आवश्यक है कि वह उन्हीं वृद्धि अवस्थाओं पर करनी चाहिए जिन पर मृदा में नमी की कमी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न परीक्षणों से विभिन्न फसलों की ऐसी वृद्धि अवस्थाओं का निर्धारण कर लिया गया है जिन पर फसलों को पानी की उपलब्धता आवश्यक है, जो इस प्रकार है। बाजरा को ही ले लें आप, फूल आने से पहले यानी कि बुवाई के 50 से 55 दिन पर पानी देना चाहिए और दूसरा पानी बाली में दाना बनते समय यानी कि बुवाई के 75 से 80 दिन बाद। ज्वार में पहला पानी फूल आने से पहले 60 से 65 दिन बाद बुवाई के और दूसरा पानी फूल आने के समय यानी कि बुवाई के 80 से 85 दिन बाद और दूधिया अवस्था में यानी कि बुवाई के 105 से 110 दिन बाद दिया जाता है। मक्का में पौध अवस्था में एक पानी दिया जाता है बुवाई के 25 से 30 दिन बाद। नर मंजरी के समय भी पानी जरूरी है और ये अवस्था आती है 55 से 60 दिन बाद। और भुट्टा जब बनना शुरू होता है, दाना बनता है उसमें, तो ये अवस्था आती है 75 से 80 दिन बाद। इस समय भी मक्का में पानी दिया जाता है। जहाँ तक इसका धान का सवाल है तो धान में कल्ले फूटते समय पानी का होना बहुत जरूरी है और ये अवस्था आती है रोपाई के 30 से 40 दिन बाद। पुष्प गुच्छ बनते समय धान में पानी दिया जाता है और ये अवस्था रोपाई के 70 से 80 दिन बाद। फूल आते समय यानी कि रोपाई के 90 से 100 दिन बाद और दाना भरते समय धान में पानी लगना जरूरी है और ये अवस्था आती है रोपाई के 100 से 120 दिन बाद। उड़द मूंग

0: जो हैं इसमें दो पानी की ज़रूरत पड़ती है, फूल आने से पहले एक तो दिया जाता है और ये अवस्था बुवाई के एक महीने के बाद, और दूसरा फली बनते समय यानी कि बुवाई के दो महीने बाद ये अवस्था आती है। किसान भाई ध्यान रखें कि फसल की इन अवस्थाओं में पानी की कमी नहीं होने दें, अन्यथा फसलों की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
1: कम खेती की बातें में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था खरीफ फसल में जल प्रबंधन और वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सरस्वत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: चंदन का एहसास।
1: और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म मिलन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी।

अब यह प्रसन्ना लता मंगेशकर को फिल्म शागिर्द में, और आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर को फिल्म का नाम है हमराज।

महेंद्र कपूर के गाय फिल्म हमराज के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिखरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्यौहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। अब समाचार विस्तार से। नागपंचमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से कामना की है कि प्रत्येक घर आंगन आनंद शांति और खुशहाली से आलोकित रहे। उन्होंने नागपंचमी को प्रकृति के प्रति श्रद्धा सह अस्तित्व और शिवत्व का संदेश देने वाला पावन पर्व बताया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व के कारण प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर जयघोष करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त श्रद्धालु अपने घरों में आज भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंची है।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रदेश भर में श्रद्धालु और कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभल, एटा और बिजनौर सहित कई अन्य जिलों

में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 12वीं तक के सभी विद्यालयों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं पीलीभीत जिले में सावन के सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरे राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्र

0: पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भावना के साथ निरंतर कार्य करते रहे।
1: भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुशी शासन का लोहा मनवाया हो।
0: स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के केजीएमयू साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर ने काव्य पाठ किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई का आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर पीएससी की नई वाहिनी का गठन किया गया है।
2: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था।
0: सिद्धार्थनगर जिले में सांसद जगदम्बिका पाल ने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ जितेंद्र सिंह ने कल वर्चुअल माध्यम से भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान सोसाइटी के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती बीमारी से बचाव के लिए समुदाय, तकनीकी और आंकड़ों पर आधारित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे खोआ, पनीर, घी आदि में स्वास्थ्य के लिए घातक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं।
3: आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में हानिकारक रसायन अथवा अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने तथा समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त करने के साथ साथ BNS की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त मिलावटी ब्रांड्स की बिक्री पर प्रदेश व्यापी रोक लगाकर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति एवं निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार कल तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी कल ही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए UP T20 लीग सीजन 4 के मुकाबले में काशी रुद्रास की टीम ने कानपुर सुपर

स्टार्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर सुपर स्टार्स ने 163 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाबी बल्लेबाजी में काशी रुद्रास की टीम ने 18.1 ओवरों में 2 विकेट पर 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। सभी नाविकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। इस बीच चित्रकूट जिले में रामघाट पर मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका के प्रति भी लोगों को सतर्क किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वंदे व्रज वसुंधरा। ब्रज की पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। आए जुड़े सब ब्रज के वासी, जब ब्रजवासी एकत्र रह जाए तो चर्चा होए, काव्य की बात होए, बड़े बड़े कथानक की बात होए, चर्चा पर चर्चा है वे लगे। आज सप्ते पहले सुनमा में आपको कवि गोष्ठी राष्ट्रीय कवि संगम हाथरस द्वारा प्रायोजित पावस, प्रतिभागी है अनिल बोहरे, मनु दीक्षित, पूरन चंद्र, चैतन्य प्रकाश उपाध्याय। तो भैया आनंद ले हो या काव्य गोष्ठी को।
1: मैं आस कवि अनिल बोहरे राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से या पावस काव्य गोष्ठी में सभी श्रोतन को हार्दिक स्वागत करते हुए, राधे राधे करते हुए, जा वक़्त वर्षा ऋतु को आनंद आ रहा है और यमुना गंगा उफान ले रही है और गंगा पूरन है के जब
0: चैतन्य प्रकाश उपाध्याय। तो भैया आनंद ले हो या काव्य गोष्ठी को।
1: मैं आस कवि अनिल बोहरे राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से या पावस काव्य गोष्ठी में सभी श्रोतन को हार्दिक स्वागत करते हुए, राधे राधे करते हुए, जा वक़्त वर्षा ऋतु को आनंद आ रहा है और यमुना गंगा उफान ले रही है और गंगा पूरन है के जब सागर में मिल रही है तो सागर उफान ले रहे है, ऐसे वहाँ में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कवि पूरन सागर को, वो अपना काव्य पाठ करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सवरे ब्रजवासी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और जा पावस के वहाँ में चंद लाइने आपके साथ साझा कर रहा हूँ। झूम झूमे आयो सावन बरसे हैं कारी घटा, नन्ही नन्ही बूंदिया कदम पे झिमारती, राधा संग श्याम सुंदर झूलत हिंडोरे नीके, गोपियां मलार गावे आरती उतारती, ग्वाल बाल नाचत हैं बाजत मृदंग भारी, यमुना के तीर आज धूम है मचियती, छोड़ के कैलाश को ध्याय भोले नाते तहां, डमरू की थाप पे जटा की गंग नाचती, गले मुंड माल सोहे शीस पे शशिका सोहे, अंग रमाए भस्म छटा अति भावती, कर ले त्रशूल शिव देखत है रास लीला, हर हर बम बम धुन नभि छावती, राधे कृष्ण संग गोपी ग्वाल बाल मगन भय, शिव गौरी देख देख मोद मनुआ लावती, धन्य धन्य सागर भयो लखे सावन को मास,

0: राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत अच्छी रचना को पाठ करो और आनंद आए गयो। जा वक़्त पावस में झूला को तो आनंद ही अलग हुए और सब में ऐसो लगे हरियाली हरियाली चारों तरफ कि प्रकृति में वो चेतना आ जाए और जहाँ चेतना की माहौल में मेरे साथ उपस्थित है हमारे साथी चेतन उपाध्याय, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपनी रचना को पाठ करें।
1: हमारे सबन श्रोतान भैयान गूँ बहनन गूँ, मैं चेतन उपाध्याय राधे राधे प्रेषित करूँ हूँ। पावस को समय है तो दो चार दोहे में कहो चाहूँ। नेक नजर कर दीजियो,

0: बहुत सुंदर।
1: मेघा बरसे सुबह भीज गए सब गात, हर से बिल से मधु भरे पुलक गए सब पा।
0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।
1: निश्चित

0: और एक पावस को गीत।
1: स्वागत है।
0: मेरो मतवारो है जाए जिया जब भर से मेगा आए।
2: क्या बात,

0: वाह
1: सुने जसुदानंद के छोना तुम हो मेरे श्याम सलोना सुध बुध सबरी गई बिसराए बिरज में बरसे मेघा आए।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: रस मुरली चाहूं दिस बरसे ऐसो लगे बिहारी हर से ओ अगन बिरहा की सही न जाए बिरज में बरसे मेघा आए। काना सुनो टेर दुखिया की आस दर्शन की बड़ी आकी
2: बहुत बढ़िया
1: मनवा।

0: वाह
1: आय सबरे ब्रजवासिन को, सबरे श्रोता भैयान को, बहनन को, राधे राधे।
0: भैया चेतन उपाध्याय ने बहुत ही आनंद दयो जहाँ हमारो भारत जो मनु को देख है, जहाँ में ब्रज में पावस को आनंद ही कछु अलग हुए, हमारे बीच उपस्थित हैं कवित्री मनु दीक्षित। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपने काव्य को पाठ करें।
2: आकाशवाणी के समस्त श्रोतन को राधे राधे। पावस को महीना चल रहे है तो सीखते पहले एक छंद पावस पे ही पढ़वो चाहूँ कि पावस मेघ में भीगे गई मन मोह की डोर किशोर में लागी हिया हिलो रवि भोर करे बरसे तर से अखियां अनुरागी पावस ऋतु सुनी बीत गई पावस ऋतु

0: अनुरागी,
1: वाह वाह
0: श्यामा
1: वाह,
0: को श्याम झुलाए रहे, सुख पाए रही अखियां अनुरागी। और पावस में कैसी ऋतु है जाओ है कि पावस की ऋतु न्यारी लगे मोहे देखन में प्यारी। पावस की ऋतु न्यारी लगे मोहे देखन में प्यारी। दादुर मोर प पीहा बोले,

पावस की रे तू न्यारी लगे मुहे देखन में प्यारी। और कहा है रे ओए कि नभ में घिर रहे बदरा कारे, नभ में घिर रहे बदरा कारे, धड़ धड़ हो जैसे बजे नगाड़े। पावस ऋतु सुख कारी लगे मुहे देखन में प्यारी। पावस की ऋतु न्यारी लगे मुहे देखन में प्यारी।

बहना भाई पे जावे बलिहारी, लगे देखन में प्यारी, पावस की ऋतु न्यारी, लगे मोहि देखन में प्यारी। और अंत में कि श्यामा झूले।

0: बहुत सुंदर।
1: पावस कीर तू न्यारी लगे मुहि देखन में प्यारी। और जा पावस ऋतु में एक नई नवेली दुल्हन अपने पति सो कहा कह रही है,
0: कहा कह रही
1: कि पावस महीना मन मारे हिलोर चलो पीहर की ओर। पावस

0: उसका रही। ब्रक्षन की शोभा न जावे कही, मधुबा गुमानी करे प्यारो सोर, चलो पीहर की ओ।
1: बहुत सुंदर
0: मनवा।

0: जल्दी ते जल्दी जी आयो करे, चातक को चित में समायो है सोर, चलो पीहर की ओर, मनवा मगन मेरो मारे ही लोर, चलो पीहर की ओर। और कहा कह रही है कि बातन में पिया न मोकू छलो, मैया के ढिंग को तुम अब ही चलो, बातन में पिया न मोकू छलो, मैया के ढिंग को तुम अब ही चलो, हिया तुम्हारो चू है रयो कठोर, चलो पीहर मनवा मगन मेरो मारे हिलोर, चलो पीहर की ओर। धन्यवाद, राधे राधे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: अभी जा पावस की गोष्ठी को संचालन जो कर रहे आंसू कवि अनिल भौरे जी, मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाए रही हूँ, आंसू कवि अनिल भौरे जी आवें और पावस ऋतु पे अपनी रचनन को वर्णन करें। आंसू कवि अनिल भौरे जी।
2: सब भैयन को ब्रजवासी को पावस ऋतु पे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं या सावन माह पावस ऋतु के अवसर पे ब्रज में बूरो खाइवे के नौते की परंपरा को स्मरण कर रहा हूँ। फूपा हो जीजा या होए जमाई, फूपा हो जीजा या होए जमाई, नौते की पाती होवी रटे रटाई, नौते की पाती होवे रटी रटाई, मेहमान धन भाग्य होए हमारो, सावन में बूरो खाइवे को पधारो।
1: वाह, वाह।
2: या नौते को पाए के पधारे जीजा संग, एक सच्चो आनंददायक किस्सा मैं हास्य कविता में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी रचना को शीर्षक है जीजा पालागन।
1: बहुत बढ़िया।
2: पावस ऋतु में गोवर्धन पर्वत पे ब्रज रज अर्पित कीनो आदि तूफान, जे ऋतु ऐसी जा में आदि तूफान खूब चले, बरखा सो चकाचक चमको पर्वत, यमुना मैया ले रही अंगड़ाई ओ उफान, घोट घटाघट चढ़ा के चक चकाचक, घोट घटाघट चढ़ा के चकाचक, अखियन में डोरा पर्यो ठंडाई को धक धका धक।
1: वाह वाह।

0: भरे करो विश्राम घाट पे राधे राधे विश्राम। काहू को मेहमान आवत पर्यो दिखाई, काहू को मेहमान आवत पर्यो दिखाई, हाथ जोर कीनी चीजा राम राम। हमें पता ही ना है कौन को मेहमान है, पर जे ब्रज की परंपरा है काहू को मेहमान हुए। टप टप बूदन को बरसाती संगीत, पावस में टप टप बूदन को बरसाती संगीत, जीजा भीजो मत हम हुए तिहारे मीत।
1: बहुत बढ़िया।
0: चुन्नटदार कुर्ता की धमक, मूछन पे चमक, घेवर को डब्बा साथ, जीजा तो पालंगन कर पल झपक, कीनो घेवर निज हाथ।
1: बहुत बढ़िया।
0: अब घेवर थोड़ी छोड़ो जाए ब्रज में, जीजा आदेश होए तो घेवर को खायो जावे, जीजा आदेश होए त्योहारो तो घेवर को खायो जावे, खाए के जे हो त्योहारी गीत गावे, जीजा सोचत है जे कौन सो सारो। जीजा चक्कर में पड़ गई, अपनी लुगाई को भेजो वीडियो बना के हमारो, फोन में पूछत बता कौन है जे वीडियो बारो, इत सखान संग मिल झटपट घेवर सिगरो ही निपटा डारो। सबरे घेवर हम लोग खा गए, जीजा को पालागन में लागो झाल। अब जीजा सोच रहे पालागन में गई जाए झालू, जीजा को हाल देखो बेहाल, जीजा सोचे मैं किस्मत को मारो, जे कैसे कांते लागे मेरो सारो।
1: वाह भैया बहुत बढ़िया।
0: कछु समझ ना आयो स्मरण शक्ति पे लगायो जोर घनघोर, तभी फर्जी जीजा बोलियो, क्योंकि पता ही ना कौन को जीजा है। फर्जी जीजा बोलियो मुख पे दिखावटी हंसी घोर, सारे बन रहे तू भतैया, बता तू ये लुगाई को कौन सवारो भैया। मैं बोलियो, अब हम रिश्तो बता रहे, मैं बोलियो जीजा बहन बहन लगते तेरी सारी की और मेरी गैया।
1: बहुत बढ़िया।
0: चाहते तू जीजा मैं सारो ताता थैया, गई अंतर रिश्तो जोड़ दो। सुनती बढ़न लाग्यो मुच्छड़ जीजा को रक्तचाप, सोचत जीजा पालागन स्वीकार के फंस गयो आप ही आप। जीजा ने ससरारी चक्कर व्यू में फंसो पायो, जाने कौन को जीजा सोच रहे हो, लयो है घेवर लूट मैं सोचो भोरे, जाए ना कहूं प्रेम को धागो टूट, झटपट एक डिब्बा घेवर को मगायो।
1: बहुत बढ़िया।
0: रुपा ग्यारे डिब्बा पे धर, ना जाने कौन को जीजा पर जाको खायो पाकू थमायो, देख घेवर को डिब्बा तापे रखो रुपया, जीजा खिलखिला मुस्कायो, सखा मंडल कर रहे हो विदा तिहारी, जीजा पालागन कृपा करें ब्रज की या मस्ती पे बाकी बिहारी।
1: वाह भैया बहुत बढ़िया।
0: हम ब्रजवासिन को जीवन संग मजाक अधिकार हमारो, ब्रजवासिन के रिश्ते में मिठास को गाम ना तो होवत हमारो, काऊ को होए जीजा जीजा कहत गाम सारो, सारो हूँ एक को नाए पूरे गाम को सारो, या मस्ती को घड़ो आनंद ले में लोग लुगाई, या ब्रज संस्कृति को नजर कौन लगाई, अब तो विकास तो पगडंडी है गई शानदार सड़क, फर्राटे ते भाजत गाड़ी आवत बेधड़क, अरे ब्रजवासियो ब्रज भूमि के आनंद को अपनाओ, और भेनोई अनकु बूरो खाए सावन में बुलाओ, सनूने पे मजबूत करो विरासत की मस्ती, हसी ठिटोली में ही बसत ब्रजवासी हस्ती, काहू को जीजा होवे होए बासो अपनोपन, और बाको 56 इंच को सीना करवे ताई करो जीजा पालागन।
2: बहुत सुंदर। आज को ये जो कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि संगम के सौजन्य सु आप सबन के सम्मुख भयो है।

0: वहां में बहुत ही बढ़िया आनंद वाले ढोला टाइप में हमारे पूरन भैया ने करियो है और चेतन उपाध्याय ने कछु दोहा और वो सुनाए हैं और हमारी बहन ने बहुत बढ़िया जो छंद सौ पढ़ियो है वाके बाद में तो आखिर में आंसू कवि बोहरे जी ने जो आनंद करवाए दियो है जीजा पालागन आप सब रे ब्रजवासिन को मैं अपनी ओर से पालागन करूं हूं सबन को पालागन सबन को पालागन।
1: वही आप आनंद ले रहे हैं कवि गोष्ठी राष्ट्रीय कवि संगम हाथरस द्वारा प्रायोजित कवि गोष्ठी आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सवन को भैया बंधुन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य
4: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना,

0: शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए

0: जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371 1117 या 2371 7106 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोकाटाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे

0: करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to beautify snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
3: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
2: The National Testing Agency NTS announced retests for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology.

0: NTA to reconduct UGC NET exams for three subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है.
2: हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें. सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं. आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए. अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें.
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
7: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा.
8: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं.
7: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें.
8: UP 112 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.
7: UP 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक.
1: और आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में ये नगमे. वहां हमने लिया है फिल्म शोर से आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की.

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को भी आपने सुना फिल्म शोर में। और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है आराधना।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों को फिल्म आराधना में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों की।

0: पिंडाडे लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म श्री 420 की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता कार्यक्रम में प्रज का पर्यावरण एवं वन संपदा का वैभव। वार्ताकार है डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल और वाचन स्वर है राजेश शर्मा का।
1: प्राचीन समय में संपूर्ण ब्रजमंडल घने जंगलों में आच्छादित था। वन संपदा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जगह जगह कुंड और सरोवर हुआ करते थे। हरियाली का वैभव प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक था। अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की उपस्थिति ने जैव विविधता को बनाकर पर्यावरण को सुंदरतम बनाया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और क्रीड़ा स्थली की वजह से ब्रजमंडल का हृदय मथुरा वृंदावन विश्वविख्यात हो गया। बांसुरी की धुन, मयूर का नृत्य, कोयल की कुहू कुहू और गाय के रभाने के स्वर से गुंजायमान पूर्व का ब्रज वर्तमान में अपने बदले स्वरूप में दिखलाई पड़ता है। वनों का जंगल कंक्रीट के जंगलों में बदल गया है। मंदिर आश्रमों के विस्तार के साथ जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की प्रक्रिया ने ब्रजमंडल के पर्यावरण को गहरी क्षति पहुंचाई है। जैव विविधता नष्ट हो गई है। पर्यावरणविदों का मानना है कि समय रहते यदि पर्यावरण विनाश की प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो भविष्य में ब्रज का प्राचीन स्वरूप ही नहीं बदलेगा बल्कि आध्यात्मिक स्वरूप भी बदल जाएगा। भगवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से नंद बाबा को बताया है कि संपूर्ण ब्रज मंडल वनों से आच्छादित होने के कारण हम सभी वनवासी हैं। हम शहरों और गांव के निवासी नहीं हैं। चारों ओर हरियाली और पहाड़ हैं। कल कल बहती यमुना नदी और सभी प्रकार के जीव जंतुओं के आवास हेतु पर्याप्त कुंड सरोवर भी हैं। वनों से आच्छादित होने के कारण ही अनेकों वनों और उपवनों का उल्लेख इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है। साथ ही विभिन्न स्थानों के नाम वनों से रखे गए हैं, जैसे वृंदावन, महावन, तालवन, विल्ववन आदि आदि। ब्रज में तुलसी, तमाल, कदंब, करील, बबूल, शीशम आदि की भरमार हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर गुंजा, जवासा, अश्वगंधा के साथ अनेकों औषधीय पादप हुआ करते थे, किंतु आज परिस्थिति बदली हुई सी दिखाई पड़ती है। वनों का घनत्व तेजी से घटा है। जो वनस्पतियां ब्रज की पहचान थीं, वो धीरे धीरे विलुप्तता की ओर बढ़ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय गुंजा, तमाल, तुलसी यानी वृंदा आदि के पौधों में अत्यधिक कमी आई है। प्रकृति का ये नियम है कि जब पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो इसका प्रभाव संपूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। पेड़ पौधों से पर्यावरण सुशोभित होता है और अनेकों जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी। प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने से प्रजातियां या तो स्थान गमन करती हैं या विलुप्त हो जाती हैं। वर्तमान में हरियाली नष्ट हो जाने से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। वर्तमान में कई पादप प्रजातियां ब्रज में देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं एक शोध से ये सिद्ध हो चुका है कि विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्रातःकाल में घर आंगन में फुदकने वाले चिड़िया, चिरोटा और गौरैया जैसे कहीं गायब से हो गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिगत ही

लिखा था, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यानी सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना के तट पर बैठे हुए बहुत सारे घने तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। कविवर रसखान ने कहा कि कौटिक एकल द्योत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि के प्रेम में ये भाव है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, उसके सौंदर्य को निहारने में है, वैसा सुख संसार की किसी भी सांसारिक वस्तु को निहारने में नहीं है। इसलिए वो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजों पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य के गौरव को बनाए रखना और इस विरासत को किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने देना है। भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानने वाले ब्रजवासियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता को बढ़ावा देना होगा। पश्चिम दिशा के वनों के नष्ट होने से रेगिस्तानी वातावरण का फैलाव बढ़ता जा रहा है। ब्रज की धरती का ताप बढ़ने के साथ वर्षा में कमी होना इसका संकेत है। 84 कोस की परिक्रमा का अधिकांश भाग जहां घने जंगलों से आच्छादित था, वो आज स्पष्ट रूप से पर्यावरण विनाश की कहानी कह रहा है। पिछले 50 दशकों में ब्रज के पर्यावरण में क्रमशः परिवर्तन हुआ है। तमाल, कदम, करील आदि पौधों की संख्या में कमी आई है। वन क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। अंत में मेरा सभी ब्रजवासियों से निवेदन है कि हम सभी मिलकर युद्ध स्तर पर हरियाली संवर्धन के कार्य को प्राथमिकता दें। ब्रज की विरासत और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को पुनः स्थापित करने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। पर्यावरण विनाश के नाम पर विकास न किया जाए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी भविष्य में अपनी मौलिकता न खो।

व्याप्तुं रहते हिंदी वार्ता ब्रज का पर्यावरण एवं वन संपदा का वैभव। वार्ताकार थे डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल और वाचन स्वर था राजेश शर्मा का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीर नगर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
1: संत कबीर नगर जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान विधायक खलीलाबाद अंकुराज तिवारी, विधायक मेहदावल अनिल कुमार त्रिपाठी और जिलाधिकारी आलोक कुमार समेत अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं व गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रगान के साथ अमर शहीदों को नमन किया। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को संविधान, देश की एकता, अखंडता और जन सुरक्षा के प्रति पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प दिलाया। पुलिस लाइन व कैंप कार्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी उन्होंने संदेश दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सेवा पदक, प्रशंसा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निर्धारित मामलों का फीडबैक भी लिया। संत कबीर नगर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह के नेतृत्व में जिला न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला जज ने अपनी माता के नाम पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि माँ सृजन का प्रतीक है और वृक्ष भी जीवन व सृजन का आधार है। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में करीब 40 पूर्व सैनिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। डीएम ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर चक्र विजेता सत्यवान सिंह के नाम से नवनिर्मित सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। संत कबीर नगर में भूजल सप्ताह के तहत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से भूजल संरक्षण जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भूजल संरक्षण आज प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वर्षा जल संचयन को अपनाने, तालाबों और जलाशयों को स्वच्छ रखने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। संत कबीर नगर में पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बीते दिनों कारागार स्थित महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अध्यक्षा ने महिलाओं की सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। संत कबीर नगर में संभावित बाढ़ एवं तटबंधों के कटान से बचाव को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। एडीएम ने सभी तटबंधों पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत चौपाल, शिविरों की व्यवस्था, बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, नौकाओं का सत्यापन, विद्युत व्यवस्था मजबूत करने और आपातकालीन रास्तों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। संत कबीर नगर पहुंची प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग विजयलक्ष्मी गौतम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। प्रभारी मंत्री ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने बीते दिनों संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक, पाकशाला, अस्पताल और महिला बैरक का जायजा लेते हुए साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता तथा बंदियों की समस्याओं की जानकारी ली। संत कबीर नगर में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने कोपिया शिव मंदिर स्थित झारखंडी शिव मंदिर और बाबा कुबेर नाथ शिव मंदिर बखिरा का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, यातायात, सड़क सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को कांवड़ मार्गों पर सतर्क निगरानी और नियमित भ्रमण के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय

0: से पूरी करने को कहा गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
1: 30 जुलाई से 28 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास का महीना है, जिसमें श्रद्धालुगण कांवड़ लेकर नदियों से घाटों से जल भरकर मंदिरों में भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संत कबीर नगर पुलिस ने प्रशासन तंत्र को मेन 3 जोन बनाए हैं, जो तीनों धनघटा, महलावल और खलीलावाद सेक्टर। साथ ही इसमें 8 हमने सेक्टर बनाए जो हमारे थानों के स्तर पर रहेंगे। इसके अलावा हमने 31 QRT की स्थापना की, प्रत्येक थाने पर 2-2 QRT अलग से रहेगी। साथ में CCTV कैमरे से पूर्णतः इसकी कांवड़ की निगरानी होगी घाटों पे, मंदिरों के अंदर और रूट पे।
2: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ में सावन के पावन मास में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। हापुड़ में भक्ति और आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिला। जिलाधिकारी हापुड़ कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर के जरिए शिव मंदिरों और ब्रज घाट पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। इसके अलावा जनपद की सीमाओं में कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। जनपद में छपकोली स्थित प्राचीन शिव मंदिर और ब्रज घाट गंगा घाट पर कांवड़ियों एवं शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया, जिसको देखकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव का जय घोष किया गया। कांवड़ यात्रा को प्रशासन द्वारा शिव भक्तों की आस्था और विश्वास को कायम रखते हुए सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के निर्देश का पालन किया गया।
4: जनपद हापुड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई। उसमें प्रथम स्थल हमने छपकौली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने ब्रज घाट लिया। हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िए जल उठा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा भक्तिमय माहौल था।
3: सावन माह शिव भक्ति के लिए खास माना जाता है। वहीं कांवड़ियों हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। वहीं जनपद हापुड़ के ब्रजघाट से भी जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंचे और जल लेकर अपने गंतव्य के लिए पहुंचे। हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट सहित हापुड़ शिवमय दिखाई दिया। वहीं कांवड़ यात्रा को सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा रहा। जनपद की सीमाओं को सील करते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा जनपद में CCTV कैमरे लगवाकर कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। गंगा तट पर नाविकों और गोताखोर लगाए गए। सड़कों के एक साइड को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया, जबकि दूसरी साइड से हल्के वाहनों को निकलवाया गया। भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया, ताकि किसी को कोई समस्या न हो सके।
5: कांवड़ में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बढ़िया। एक रोड चल रहा है, एक रोड कांवड़ियों के लिए खाली है। वहीं से ये हमारी कांवड़ हरिद्वार से लेकर पलवल तक जाएगी।
3: जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने अस्पताल ले जाते समय पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहे 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। हापुड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने सिंचाई विभाग में आयोजित बैठक में कहा कि नीट परीक्षा लीक होने के बाद CJP के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ है। जो छात्रों की मांगे थी उनको पूरा किया गया है। पेपर के आरोपी जेल में है। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दों पर कहा कि राम मंदिर के लिए देश और विदेश से चंदा दिया जाता है और इस तरह की घटना निंदनीय है। प्रदेश सरकार ने इस पर SIT गठित की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में विभिन्न योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। पूर्व सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने के भी निर्देश दिए। जनपद हापुड़ में खाद्य विभाग ने टोडलपुर सिंभावली की तरफ से आ रही पनीर लेकर एक गाड़ी को पकड़कर पनीर के 2 नमूने संग्रहित किए गए। पनीर ड्रमों में भरा हुआ था, जो कि असुरक्षित तरीके से भंडारित था, जिसकी मात्रा लगभग 200 किलोग्राम थी, जिसको JCB से गड्ढा खुदवाकर नष्ट कर दिया गया। पनीर की कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई है। जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बाबूगढ़ छावनी में सिलाई प्रशिक्षण ले रही महिलाओं और बालिकाओं को सिलाई किट एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किए गए। जनपद हापुड़ की मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता भी की, साथ ही उन्हें समूह से जोड़कर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जनपद हापुड़ में जनपद के प्रभारी मंत्री KP मलिक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अटल पार्क में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों, युवाओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभारी मंत्री KP मलिक ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा शहीदों को श्रद्धांजलि है। बीते 14 अगस्त को आजादी के विभाजन की विभिषिका

0: शिका पर देश के विभाजन के समय हुए नरसंहार में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों में होने वाला किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जो वातावरण को दूषित करता है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन, अवैध खनन, अपशिष्टों का गलत निस्तारण, हानिकारक पदार्थों का उपयोग व पर्यावरणीय नैतिकता के अभाव में आज कई प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु, जल, ध्वनि, मृदा आदि फैल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जा रही हैं, जिसमें पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है। पौधों को हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं, जिनमें से एक है शैवाल वर्ग। शैवाल या एल्गी सरल पौधे हैं, जिनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। अधिकांश शैवाल जलीय होने के कारण यह छोटे तालाबों से लेकर समुद्रों में नम भूमि, वृक्षों की छाल, नम दीवारों पर हरी, भूरी या काली परतों के रूप में मिलते हैं। कुछ शैवाल पौधों की जड़ों में जबकि कुछ कवकों के साथ मिलकर लाइकन बनाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि समुद्री शैवाल वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में अहम रोल निभाते हैं। साफ और गंदे पानी में मिलने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की शैवाल प्रजातियां प्रदूषण के स्तर को बताती हैं। इस प्रकार ये प्रजातियां प्रदूषण सूचक की तरह कार्य करती हैं। वैज्ञानिकों ने शैवालों की 10,000 ऐसी प्रजातियों का पता लगाया है जो गंगा में रोपित करने के बाद गंगा में फैले विष का पान करेंगी। इसी प्रकार सीवेज जल के उपचार में विशिष्ट जीवाणुओं के साथ क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, सेंडस्मस व स्पाइरुलिना शैवाल काम में लिए जाते हैं। जीवाणुओं से विघटित होने वाला सीवेज शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण व वृद्धि के लिए काम में ले लिया जाता है। इन शैवालों को समय समय पर निकालकर पशु चारे व प्रोटीन स्रोत की तरह काम में ले लिया जाता है। नदी के प्रदूषित तटों को नम भूमि में मौजूद शैवाल प्रदूषकों का निम्नीकरण करके आत्मसात कर लेते हैं। वायु में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में भी इन जलीय शैवालों की प्रमुख भूमिका हो सकती है। कुछ बिजली घरों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए शैवाल बायो रिएक्टर्स को काम में लिया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को तालाब या छोटी झील में पंप करते हैं जहां शैवाल पोषण प्राप्त करते हैं। विकल्प के तौर पर कई जगह बायो रिएक्टर्स को धुआं चिमनियों के शीर्ष पर सीधे तौर पर लगा दिया जाता है, जिसमें क्लोरेला वर्गरिस व क्लोरेला सेलाइना शैवाल काम में लिए जाते हैं। हाल ही स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाईवे के ऊपर शैवाल फार्म बनाए गए हैं, जिनमें शैवालों को फिल्टर बेड पर लगाकर जैविक क्षणीकरण तकनीक काम में ली गई है। शैवाल संवर्धन द्वारा यूरेनियम व प्लूटोनियम को भी अलग करने के प्रयास चल रहे हैं। तमिलनाडु के रानीपेट के एक चर्म शोधन उद्योग में भारी धातुओं को कम करने में शैवाल का उपयोग सफल हुआ है, जबकि एल्जिनेट बनाने वाली फैक्ट्री में अपशिष्ट को उपचारित करने के लिए क्रूओकॉकस टर्जिडस शैवाल का उपयोग किया गया और यह अत्यंत प्रभावी रहा है। इस प्रकार नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टोक, अनाबिना आदि का जैविक खाद की तरह धान के खेतों में प्रयोग करने से नाइट्रोजनकारी रासायनिक उर्वरकों द्वारा होने वाले भूमि प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इस तरह हम शैवालों का कई तरह से उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषण को काफी सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं।

अब यार सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था प्रदूषण नियंत्रण में शैवालों का महत्व। आलेख और वाचन था डॉक्टर मीरा भटनागर का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, तारीफ सुनना अक्सर हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन बात केवल तारीफ की नहीं होती। जब हम किसी भी अच्छे व्यक्ति की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसको एक आत्मबल भी मिलता है, क्योंकि प्रशंसा के दो मीठे शब्द किसी के दिन को ही नहीं बल्कि उसके जीवन को भी बदलने की ताकत रखते हैं। हम अक्सर लोगों की कमियां तो जल्दी देख लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातों और प्रयासों की प्रशंसा करने में हम देर कर देते हैं। जबकि किसी के छोटे से प्रयास की किसी व्यक्ति द्वारा अगर सच्चे मन से प्रशंसा की जाए, तो वो प्रशंसा उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और उसे आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करती है। जब हम किसी के अच्छे काम की तारीफ करते हैं, यानी प्रशंसा करते हैं, तो उसे यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत देखी और समझी जा रही है। यही एहसास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है और उसे पहले से अपने काम को और अधिक बेहतर बनाने की एक प्रेरणा भी मिलती है। प्रशंसा का अर्थ केवल बड़ी उपलब्धियों पर तालियां बजाना ही नहीं, घर में बच्चे की मेहनत की सराहना करना, किसी सहकर्मी के अच्छे काम को स्वीकार करना या किसी बुजुर्ग के अनुभव का सम्मान करना भी प्रशंसा है। हाँ, प्रशंसा सच्ची और उचित भी होनी चाहिए, केवल खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि सच्ची प्रशंसा रिश्तों में मिठास घोलती है और मन को सकारात्मक बनाती है। इसलिए जब कभी आपको अपने घर में, अपने आसपास या अपने कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति का या अपने किसी इष्ट मित्र का काम अच्छा लगे, तो उसे दिल से कहें, आपने बहुत अच्छा किया, आपका प्रयास सचमुच सराहनीय है। याद रखिए, शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन किसी की सच्ची प्रशंसा का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए प्रशंसा करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपके दो सच्चे शब्द किसी के हौसलों को नई उड़ान दे सकते हैं।

0: श्रोताओं, जो लोग स्वरोजगार कर स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो सरकार भी उनके साथ है और इस दिशा में विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि आम लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मथुरा के उपायुक्त उद्योग श्री चंद्रभान सिंह जी। तो आज हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रभान सिंह, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र मथुरा। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं और जनपद मथुरा के सभी निवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं जो सरकार की स्वरोजगार स्थापित करने के महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हम अपने श्रोताओं तक पहुँचा सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सबसे फ्लैगशिप और महत्वाकांक्षी योजना है सीएम युवा योजना, जिसको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि योजना ना होके एक अभियान है जिसमें हमें अधिक से अधिक अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को, अपने युवा साथियों को रोजगार से जोड़ना है। ये एक ऐसी योजना है जिस योजना में आपको बिना ब्याज का, मतलब ब्याज रहित और कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा और साथ में ही आपको 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसमें जो हम लोगों का, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1,00,000 युवाओं को प्रतिवर्ष और 10 वर्ष में 10,00,000 युवकों को हमको रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के जो मुख्य आकर्षण है, जो मुख्य बिंदु हैं कि न्यूनतम कक्षा 8 पास हमारी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग होना चाहिए। इसमें आपको 5,00,000 रुपये तक का कोई भी उद्योग या सेवा, उद्योग मतलब आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, सेवा मतलब सर्विस इंडस्ट्री, जैसे होटल हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए या किसी भी तरीके की सर्विसेज, इसमें 5,00,000 रुपए तक की परियोजनाओं पे आपको 100% ब्याज मुक्त, मतलब आपका जो ब्याज है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और कोई भी कोलेट्रल या गारंटी नहीं लगेगी। बैंक द्वारा आपसे किसी भी तरीके की कोई गारंटी या कोई कोलेट्रल की मांग नहीं की जाएगी, 100% ब्याज मुक्त होगा और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इस पे 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये योजना इस तरीके की है कि आप बस केवल अपना विजन बनाइए, अपने मन में कुछ काम करने का प्लान करिए और जिला उद्योग केंद्र में आप एक बार विजिट करिए या ऑनलाइन वेबसाइट पे देख सकते हैं और वहां से इस योजना के बारे में सारी आपको जानकारियां, पात्रता, प्रक्रिया सब कुछ पता चल जाएगी। इसी के साथ जो हमारे विभाग में अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि आप लोग सभी अवगत ही होंगे कि ODOP, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इसके अंतर्गत

0: जनपद मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक, चूंकि ब्रज की नगरी है तो ठाकुर जी की पोशाक यहाँ पे ODOP है, इसी के साथ स्वच्छता संबंधी उपकरण ये भी यहाँ का ODOP है। इस योजना में आपको अगर अपना रोजगार शुरू करना है तो आपको सब्सिडी वाला ऋण भी मिलेगा। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो इसमें टूलकिट और ट्रेनिंग योजना भी चलती है, जिसमें आपको 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के उपरांत आपको मानदेय दिया जाएगा और काम करने के लिए उस विधा से संबंधित मशीनरी भी दी जाएगी। और अगर आगे अपना बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो आप किसी न किसी योजना से आप लाभ लेके अपना एक बड़ा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं, जैसे हमारे नाई हो गए, बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, इनके लिए एक अलग स्कीम चलाई हुई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे परंपरागत कारीगर जो किसी भी विधा से, वो चाहे दर्जी हों, चाहे वो मोची हों, चाहे वो हमारे लोहार साथी हों, चाहे हमारे वो नाई हों, हलवाई हों, ऐसे बहुत सारी ट्रेडें हैं, इन ट्रेडों में उन्हें 10 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ उन्हें मानदेय के रूप में एक धनराशि मिलेगी और उस विधा में काम करने के लिए उनको वो सारी मशीनरी मिलेंगी, जिससे वो प्रतिदिन अपनी आजीविका का कुछ न कुछ उनकी आजीविका की व्यवस्था होगी। और अगर उसको बड़े स्केल पे ले जाना चाह रहे हैं तो उनको हम बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी वाला ऋण भी दिला सकते हैं, ब्याज फ्री वाला ऋण भी दिला सकते हैं। तो ये योजनाएं हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर कुछ हमारे युवा साथी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ 25 लाख 50 लाख तक की भी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसमें 25% की सब्सिडी होती है और वो कोई भी अपना बड़ा उद्यम, वो चाहे सेवा क्षेत्र का हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हो, वो आराम से इसमें स्थापित कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि जो कई बार देखा जाता था कि बैंकों से समस्याएं आ रही हैं, अब इन योजनाओं की समीक्षा हर एक स्तर पे, जिला स्तर पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, मंडल स्तर पे आयुक्त महोदय द्वारा, और इसी तरीके से एक प्रक्रिया बनी हुई है, शासन स्तर पे इसकी समीक्षा होती है, जिसमें फास्ट्रैक माध्यम से प्रयास रहता है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर हम लोग उनका ऋण हर हालत में डिसबर्स करा ले जाएं।
1: अभी जो आपने प्रशिक्षण का जिक्र किया, ये बताएं कि जिला उद्योग केंद्र मथुरा के माध्यम से किस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं?
0: हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण योजनाएं, दो योजनाएं हैं हमारे पास। एक योजना हमारी है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें हमारे परंपरागत कारीगर जैसे दर्जी, मोची भाई हो गए, लोहार साथी हो गए, हमारे राजमिस्त्री हो गए, टोकरी बुनकर हो गए, सुनार हो गए, ऐसे वो सारी ट्रेडें जो हमारे परंपरागत काम से जुड़ी हुई हैं वो इसमें हैं, जिसमें आप किसी भी जनसेवा केंद्र से, आप अपने मोबाइल से या हमारे कार्यालय में संपर्क करके आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 10 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा और प्रशिक्षण में आपको 10 दिवस का रहना खाना सारी व्यवस्थाएं रहेंगी जो सरकार की तरफ से निःशुल्क रहेंगी, और इसी के साथ आपको 10 दिवस का मानदेय भी मिलेगा, लगभग 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रहता है, 4,500 रुपये। और इसके बाद जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो अगर हमारे कोई दर्जी साथी हैं तो उनको सिलाई मशीन, वो दर्जी में काम करने वाले वो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी मशीनरी मिलेगी। कोई हमारे अगर धोबी साथी हैं तो उनको धोबी का काम करने के लिए, उस विधा के लिए उनको बहुत सारा सामान और उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। जो दूसरी हमारी प्रशिक्षण योजना है वो ODOP प्रशिक्षण योजना है। इस योजना के अंतर्गत उनको, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाक और प्लम्बर मतलब स्वच्छता संबंधी उपकरण, दो ट्रेडें हैं ODOP के रूप में, तो इन दोनों ट्रेडों में आपको ठाकुर जी की पोशाक का प्रशिक्षण भी मिलेगा, प्रशिक्षण के रूप में मानदेय भी मिलेगा, और जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको काम करने के लिए अच्छी उन्नत किस्म की हाईटेक सिलाई मशीनें मिलेंगी। और फिर आगे अगर आप उस काम को और बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे ब्याज मुक्त ऋण सब्सिडी वाली योजनाओं से आप जुड़ सकते हैं।
1: तो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा या सबसे पहले यहाँ जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में संपर्क करना होगा?
0: बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आप किसी भी जनसेवा केंद्र जा सकते हैं और हमारी योजनाएं इतनी लोकप्रिय योजनाएं हैं कि आप वहां पे जाके जनसेवा केंद्र संचालक से कह सकते हैं कि हमको जो है CM युवा योजना में आवेदन करना है, या हमको प्रशिक्षण की योजना में आवेदन करना है, या हमको विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना है, तो वो आपका आवेदन कर देगा। बहुत नॉमिनल सी फीस वो लेता है, हमारे आवेदन की कोई फीस नहीं है। इसके बाद हमारे युवा साथी, चूंकि अब मोबाइल और इनमें इंटरनेट पे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो वो मोबाइल के माध्यम से भी अपने घर से अप्लाई कर सकता है। हमारी वेबसाइट है msme.up.gov.in। अगर उसको कोई और समस्या आ रही है या नहीं समझ पा रहा है तो हमारा कार्यालय जिला उद्योग केंद्र मोहली रोड पे है, आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, हम यहाँ से भी आपका आवेदन करा देंगे।
1: आवेदन करने के बाद क्या कोई यहाँ कार्यालय में कोई उनका यहाँ साक्षात्कार लिया जाता है? किस तरह से जो

0: का ऋण है वो पास होता है।
1: जब आपका आवेदन हो जाता है, आवेदन के पश्चात फिर एक साक्षात्कार की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग स्क्रूटनी करते हैं कि हम आपने जो आवेदक है उसकी इच्छा और उसकी विधा का चयन करते हैं, तत्पश्चात उसको सेंसिटाइज करते हैं कि हमारी ये योजना है, इसमें इतने दिन का प्रशिक्षण है, आपको आना होगा। तत्पश्चात जब उसका चयन हो जाता है, चयन हो जाने के पश्चात प्रशिक्षणदायी संस्थाएं हैं जो शासन द्वारा नामित होती हैं, हम उनके पास आपका आवेदन भेज देते हैं और आपका प्रशिक्षण वहां से प्रारंभ हो जाता है।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मथुरा के उपायुक्त उद्योग श्री चंद्रभान सिंह जी। और जैसा कि स्वावलंबन और स्वरोजगार की दिशा में चल रही विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी, तो जो भी ऐसे लोग हैं, युवा हैं, जो सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो आपने हमारे श्रोताओं तक और विशेष रूप से युवाओं तक इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि एक जज्बा और एक उम्मीद और एक प्लान बनाइए, और बस आपका केवल एक ध्येय ये होना चाहिए कि हमें अपना उद्यम स्थापित करना है और हमें 4 और लोगों को नौकरी देना है। अगर आप इस ध्येय के साथ हमारे कार्यालय विजिट करते हैं तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपका हर संभव मदद करेंगे और आपके आवेदन कराने से लेकर प्रशिक्षण कराने और ऋण वितरण तक जो भी यथासंभव सहयोग होगा हम करेंगे। और केवल आपका यहीं तक सहयोग नहीं रहेगा, जब आपका एक बार उद्यम स्थापित हो जाएगा तो आपके लिए मार्केट, विभिन्न मेले इत्यादि के माध्यम से हम आपके लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग, मार्केटिंग इत्यादि का भी काम करेंगे। तो मैं पुनः जो है आकाशवाणी का और साथी संचालक का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट msme.up.gov.in इस पे आप विजिट कर सकते हैं और सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी या कोई कंफ्यूजन होने पे आप जिला उद्योग केंद्र आ सकते हैं, यहाँ पे हमारी टीम है जो आपको हर संभव मदद करेगी। बस हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

0: श्रोताओं, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ किसी व्यक्ति के अधिकार कम नहीं होते। हमारे बुजुर्गों को भी सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जीने का पूरा कानूनी अधिकार है। भारत में बुजुर्गों के लिए कौन कौन से कानूनी अधिकार और संरक्षण उपलब्ध हैं, आज इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं स्थायी लोक अदालत मथुरा की सदस्य सुश्री प्रतिभा शर्मा जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय जिस तरीके का है, एकात्मवाद का समय है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं अकेला रहूं और खुश रहूं। उसको सिर्फ अपने परिवार से मतलब होता है। परिवार भी कहां तक सीमित रह गया है, वो स्वयं, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। इसके अलावा वो किसी का भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए वृद्धों की, माता पिताओं की उपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए जब सरकार को ये महसूस हुआ कि देश में बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का, माता पिताओं का अपमान और उनकी देखभाल घटती जा रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2007 में एक कानून का निर्माण किया गया, जिस कानून का नाम है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, जिसके तहत माता पिता और बुजुर्ग व्यक्तियों को ये सुविधा प्रदान की गई कि उनके पास जो संपत्ति है वो उनकी रहेगी, वो किसी के पास नहीं जाएगी। अगर वो किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, वसीयत कर देते हैं, या बच्चों के नाम कर देते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर देते हैं और फिर उनकी केयर टेकिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, तो उसी कानून में ये प्रावधान भी है कि वो संपत्ति वापस उन्हीं बुजुर्ग और माता पिता के पास चली जाएगी। वो जिसको भी चाहे वो उस संपत्ति को दे सकते हैं और अपने केयर टेकिंग करा सकते हैं। इसके साथ ही
2: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
1: में शुरू से ये प्रावधान है कि अगर माता पिता असक्षम हो गए हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, या बुजुर्ग व्यक्ति असक्षम हो गए हैं और बच्चे या सामाजिक व्यक्ति उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, तो वो भी भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस कानून के द्वारा जो संपत्ति चल और अचल होती है, जिसको कि बच्चों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर बच्चे या जिस उत्तराधिकारी को दी जाती है वो उनकी देखभाल नहीं करता है, तो वो संपत्ति फिर वापस उन्हीं को मिल जाएगी। ये अंतर है।
3: कहने का तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो भी संतान है उनको अपने बुजुर्ग माता पिता की शारीरिक रूप से भी देखभाल करनी होगी।
1: हाँ, बिल्कुल, हर तरीके की देखभाल उनको करनी है। केवल ये नहीं कि कुछ पैसे कोर्ट ने बांध दिए और वो उनको मिल गए, वही भरण पोषण हो गया। जैसे 5,000 है, 2,000 है, तो 2,000 में पूरा महीने का खर्चा नहीं चल सकता और कई बार बच्चे या जिसके भी खिलाफ वो होता है वो नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में इसमें ये अंतर रखा गया कि भरण पोषण का मतलब कोई धन राशि नहीं, बल्कि उनकी पूरी तरीके से देखभाल है। इस एक्ट के आने के बाद अगर किसी सामाजिक व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को भी ये जानकारी में आती है, तो वो व्यक्ति भी उसकी तरफ से प्रार्थना पत्र प्राधिकरण के समक्ष दे सकता है और बुजुर्ग व्यक्ति और माता पिता को लाभ प्रदान किया जा सकता है। इसका
3: जो भी बुजुर्ग नागरिक हैं और उनकी कोई संतान नहीं है, उनकी संपत्ति में कोई भी और अन्य हितवत व्यक्ति है, तो क्या ये प्रावधान ठीक उसी तरह से उसके लिए भी लागू होंगे या नहीं?
1: जी बिल्कुल, कोई वरिष्ठ नागरिक है और वो ला औलाद है या बे औलाद है, उसके परिवार में कोई भी नहीं है और उसने अपनी संपत्ति किसी थर्ड व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी है, वसीयत कर दी है, या उसको अपना नियोक्ता नियुक्त कर दिया है कि पूरे जीवन तुम मेरी देखभाल करोगे, और ऐसा व्यक्ति अगर धोखा करता है तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट में जाया जा सकता है। इसके साथ ही इस एक्ट का एक और भी नियम है कि ये प्राधिकरण, उसके संज्ञान में अगर आ जाता है, जैसे कई खबरें अखबारों में छपती हैं या टीवी चैनल पे चलती हैं, तो प्राधिकरण स्वतः संज्ञान ले सकता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को लाभ प्रदान

0: कर सकता है। जैसा आपको याद होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आश्रय सदन में रहने वाली महिलाओं की खबर छपने पर स्वतः संज्ञान लिया था और उन महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा।
1: और अगर हम बात करें इस अधिनियम के तहत आवेदन की प्रक्रिया की, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक किस तरह से इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदन कर सकते हैं?
0: इस अधिनियम के तहत धारा 5 के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति, माता पिता, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत माता पिता जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे, वो असमर्थ है तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या संगठन के द्वारा भी उसका लाभ लिया जा सकता है अथवा प्राधिकरण इसका स्वयं संज्ञान ले सकता है और उसके बाद में वो उन संतानों को नोटिस इशू करेगा और उस प्रक्रिया को लेते हुए उनको मासिक भरण पोषण या जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन सबके आदेश पारित कर सकता है।
1: तो यानी विधिक सेवा प्राधिकरण में बुजुर्ग लोगों को इसके लिए आवेदन करना होगा?
0: अलग से वैसे इसका ट्रिब्यूनल बनाया गया है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल नहीं राज्य सरकार द्वारा कहीं बनाया गया है तो वो इसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं और प्राधिकरण पूरी तरीके से बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।
1: ऐसे जो भी बुजुर्ग लोग हैं जिनकी ना तो कोई संतान है और ना कोई नाते रिश्तेदारी कुछ भी नहीं है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके लिए जैसा कि वृद्धा आश्रम जो खोले गए हैं इस तरह की सुविधाएं और उनके चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं हैं उसके लिए क्या प्रावधान है कि राज्य सरकार उनको इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी?
0: इस अधिनियम के तहत सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि व्यक्ति का कोई अगर रिश्तेदार नहीं है और वो बिल्कुल निराश्रित है तो सबसे पहले उसको अपने संरक्षण में लेकर आश्रय प्रदान किया जाएगा, तत्पश्चात उसका मेडिकल आदि कराया जाएगा, चिकित्सीय सुविधाएं सभी दिलाई जाएंगी। फिर चूंकि व्यक्ति केवल रहना और खाना और कपड़े ही जरूरी नहीं है, कभी वो बाहर निकल रहा है कुछ कर रहा है तो उसको हाथ खर्च के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, तो इस स्थिति में सरकार द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की व्यवस्था की गई है और उनको इसी अधिनियम के तहत पेंशन प्रदान की जाती है।
1: ऐसे जो भी बुजुर्ग लोग हैं अगर उनको कोई समस्या है इस तरह की या उनकी देखभाल नहीं हो रही है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: उनके लिए संदेश यही है कि पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए, उसे दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, स्वयं उसकी रक्षा वो तभी करेगा जब वो खुद जागेगा, तो सबसे पहले वो अपने सभी अधिकारों की जानकारी ले लें। इसके साथ ही इसमें एक और भी विशेष है, धारा 17 और 18 में विधिक प्रतिनिधि का अधिकार। अगर व्यक्ति स्वयं असक्षम है तो उसे एक विधिक प्रतिनिधि मिलता है जो उसकी प्रत्येक समस्या को उठाता है और उस कार्य को करता है। उसी के साथ एक भरण पोषण अधिकारी भी चुना जाता है जिसके तहत की जब प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी जो कि प्रथम श्रेणी के अन्यून अधिकारी होते हैं उनके नाम से बुलाया जाता है, उन्हें भरण पोषण अधिकारी की संज्ञा दी गई है और वो प्रत्येक जिले में होती है और जहां पर भी निराश्रित या इस तरीके के महिला या पुरुष पाए जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके भरण पोषण का दायित्व उनके ऊपर होता है। और अगर मथुरा जनपद में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति इस तरीके की समस्या से ग्रस्त होता हुआ आपके समक्ष आता है तो मैं उनकी पूर्ण मदद करने के लिए जैसा कि प्रतिबद्ध हूं पूर्ण मदद करूंगी।
2: और श्रोताओं, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे यही कहेंगे कि सड़क पर सुरक्षित चलना हर व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए सड़क पर खुद सुरक्षित चलें और अन्य लोगों को भी सुरक्षित तरीके से चलने दें। अगर हम तेज गति से या लापरवाही से अपने वाहन को चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इस लापरवाही की वजह से अन्य लोगों की सुरक्षा, उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए कुछ सुरक्षा नियमों को पर ज़रूर ध्यान दें और यातायात को सुरक्षित बनाएं। जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर वाहन को तेज गति से नहीं चलाएं, हर स्थान पर एक गति सीमा निर्धारित रहती है, उसी गति सीमा के अंदर ही वाहन को चलाएं क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से हो जाती हैं, इसलिए वाहन को नियंत्रित रूप से ही चलाएं। और एक बात का और ध्यान रखें कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें क्योंकि ये भी दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और एक और बात, कभी नींद आने या थके होने की स्थिति में वाहन को नहीं चलाएं, और दूसरा कि कभी भी वाहन को जल्दबाजी में ओवरटेक नहीं करें, और दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का इस्तेमाल करें और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का अवश्य इस्तेमाल करें और यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाएं। और एक नज़र अब आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज स्थित कॉलेज में आयोजित 70वीं माध्यमिक विद्यालय मंडल स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में जनपद मथुरा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विभिन्न आयु वर्ग में टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बालिका वर्ग के अंडर 14 मुकाबले में मथुरा ने मेजबान

0: फिरोजाबाद को फाइनल में हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया और वहीं बालिका अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में मथुरा की टीम ने कड़ा मुकाबला पेश करते हुए उप विजेता बनने का गौरव हासिल किया। और इसी के साथ एक और खबर है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम ने तैयारियां तेजी से कर दी हैं और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत और शहर को आकर्षक स्वरूप देने के लिए प्रमुख चौराहों और मार्गों पर विशेष चित्रकला व सजावट की जा रही है। और बात करें आज के दिन विशेष की, तो आज की तिथि इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1909 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में लंदन की पेंटोनविली जेल में फांसी दी गई थी। और आज ही के दिन सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेड क्लिफ लाइन को सार्वजनिक किया गया था। तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: सुन रहे थे कार्यक्रम प्रज दर्पण, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे जितेंद्र सिंह और कार्यक्रम संयोजन था ओपी सिंह का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर, शाबिर कुमार को भी आपने सुना फिल्म प्यार झुकता नहीं में, और आगे सुनते हैं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को। फिल्म का नाम है कर्ज।

अभी आपने सुना सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों को फिल्म बागी में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अभी आपने सुना हिमेश रेशमा मजिया को, फिल्म का नाम था आपकी खातिर। और आइए सुनते हैं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म का नाम है करण अर्जुन।

सुना कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों को। फिल्म का नाम था धड़कन और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों को। फिल्म का नाम है कुछ दिल ने कहा।

अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म कुछ दिल ने कहा, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

उदित नारायण चित्रा के गाए फिल्म रंगीला के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।

0: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी
2: जी। नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
2: मैं राजा राम तरकर बोल रहा हूँ सर, भाई राम से रिफाइनरी बरारी।
1: राजा राम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: जी आपका भी सब।
1: क्या करते हैं राजा राम जी?
2: मैं खेती करता हूँ सब, वैसे रिटायरमेंट हूँ।
1: जी जी
2: रहता हूँ।
1: कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं हमारा?
2: मैं तो सब आपका 75 साल हो गई, आपका आकाशवाणी केंद्र स्टार्ट हुआ है तो उससे आपका ही फैन हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
2: जी सर आपको भी। और मैं एक गाना मेरे देश में पवन चले पुरवा ये सुनना चाहता हूँ।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी
1: सर जी, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल
1: सर जी। शिवा लोहट एमपी विदिशा से आपका नेमे श्रोता बात कर रहा था।
0: स्वागत है शिवा जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: एकदम अच्छे हैं हम भी। आपके परिवार में सब ठीक हैं?
1: जी, सभी लोग कुशल मंगल से हैं सर।
0: जी जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: जी बिल्कुल सर, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से चालू करके
0: जी,
1: उसको होम थिएटर में कनेक्ट करके सर, और आसपास के लोग भी सुनते हैं।
0: तब तो बहुत आनंद आता होगा।
1: जी बिल्कुल सर।
0: आज बताइए क्या फरमाइश है और क्या सुनवाना चाहेंगे अपने साथियों को?
1: सर जी, हमारे सेना पे खड़े हुए जवानों को यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, और जिन्होंने शहादत दी उन शहादत वीरों को भी नमन करता हूँ। और एक गाना रहेगा सर, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: गंगाधर जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: बहुत दिनों के बाद कॉल मिला आपका हमें।
1: जी जी सर, और आप हमें श्याम सुवानी या बात SMS में नाम देते हो तो बहुत आनंद होता सर।
0: अरे वाह, ये तो आप लोगों की सेवा है सर।
1: जी जी सर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम पेश करते हैं सर आप।
0: जी धन्यवाद। और परिवार में सब ठीक हैं आपके?
1: तो कुशल मंगल है सर।
0: आज बताएं क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: ये माँ तुझे सलाम का टाइटल सॉन्ग सुनना है सर। हमारे तुकाराम जाधव जी, भगवान सिंह जी है, सुनील जा, सोनू जी है, राजेंद्र गंगवार जी है, और उदयला टेलर जी है, और तनुश्री सातारा से है सर। सभी लोगों को, आप लोगों को भी सुनिए सर गाना देशभक्ति पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी फरमाइश।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी, आदरणीय उद्घोषक महोदय नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद सर। सर, मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा सिहोरा।
0: कैसे हैं चौधरी साहब?
1: हम तो एकदम मस्त है सर, आप बताएं, आप और हमारी समस्त आकाशवाणी टीम कैसी है?
0: देखिए, अगर हमारे श्रोता मस्त हैं, एकदम स्वस्थ हैं, तो हम भी स्वस्थ और मस्त हैं।
1: जी धन्यवाद
0: जी।
1: स्वस्थ होने चाहिए सर, ऐसी कामना करते हैं हम लोग।
0: बाकी सब ठीक ठाक है आपके परिवार में?
1: सभी लोग कुशल मंगल हैं, आप लोगों की दुआएं हैं सर।
0: जी जी, खेती बाड़ी में क्या चल रहा है? बारिश कम हो रही है ना?
1: बारिश कम हो रही है, लेकिन क्या है सर कि सिंचाई के साधन

0: अपने पास ट्यूबवेल और इंजन वगैरह उसी से कर रहे हैं।
1: जी जी, चलिए उम्मीद है भविष्य में अच्छी बारिश होगी। फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
0: फिल्म का नाम है महबूबा और गाने के बोल हैं, मेरे नैना सावन वादो फिर भी मेरा मन प्यार।
1: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: राधे राधे। विजय जी कैसे हैं?
1: हाँ बढ़िया अंकल जी, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ मैंने कॉल लगाया था सर, फरवरी के महीने में लगाया था मैंने कॉल आपके पास।
0: जी जी,
1: अब मुझे आपकी याद आई तो मेरा भाई साहब के पास कॉल कर लूँ।
0: करते रहा करिए फोन।
1: और बढ़िया हो?
0: एकदम अच्छे। परिवार में कैसे हैं सब?
1: हाँ मेरे परिवार में सभी बढ़िया है, मेरी मम्मी भी बढ़िया है और सब बढ़िया, मतलब सब अच्छे हैं।
0: जी जी, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: पहले मेरे बच्चे उनको नाम देना चाहता हूँ पहले मैं।
0: बिल्कुल।
1: ईसु हस खुशी, और मेरे दो बतिये चुन्नू और मुन्नू
0: जी।
1: और गाने के बोले अकिया है प्यासी रे प्यासी मने वाले पूरन मासी, ये वाला गाना
0: सुनवाते हैं। विजय जी आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राधे राधे
0: राधे राधे।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है नागपंचमी पर आधारित नौटंकी। लेखक हैं रामजी लाल भट्ट और प्रस्तुति है TN शर्मा की।

मन मलीन रहते बिना पुत्र के अति दुखारी सदा ही चिंतित यो रहे।

भव विपलिय सारा।

su avsar de barat sadkari kecha

caminho.

डर अपना नहीं, डर

de संग यहाँ पर रह कर सब सुख ली मेरी वीर अगर

अभी आप सुन रहे थे नौटंकी, जिसका शीर्षक था नागपंचमी। लेखक थे रामजी लाल भट्ट और प्रस्तुति थी TN शर्मा की। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

मुश्किलों से घबराकर रास्ते बदले नहीं सकते, मुश्किलों से घबराकर रास्ते बदले नहीं करते, हौसले वाले कभी हालात से डरा नहीं करते। गिरकर संभलना ही तो जिंदगी का हुनर है, गिरकर संभलना ही तो जिंदगी का हुनर है, जो कोशिश करते हैं वो कभी हारा नहीं करते। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं दुर्गेश भास्कर करती हूँ सभी श्रोताओं का स्वागत सत्कार अभिनंदन कार्यक्रम गीत बात और SMS में। श्रोताओं, आपके संदेश हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे।

आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं ये सावन के महीने में आज जो सोमवार है भोले बाबा का, तो एक आप ही की फरमाइश का ये प्यारा सा गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। इस गीत को लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में प्रथम हमें 11:45 का जो संदेश मिला है वो संदेश मिला है अमरावती महाराष्ट्र से। हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और इनका पूरा रामेकर परिवार। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है नरेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नापकर, निर्मला विशाल। मड़कापुर से हमें लिख रहे हैं नारायण, सोपना, राजकुमार, आशीष। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सुरेश वाडेकर हमें लिख रहे हैं कोटवा नारायण बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल का संदेश मिला। आप हैं कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका। पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा का संदेश मिला। पंडरिया से हमें संदेश लिख रहे हैं पवन सेन देवी, प्रभा देवी, लक्की बिक्की, नानू, रविन्द्र, रौनक सेन। अगले संदेश करता है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, तमन्ना, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। रेशमा अंसारी, सना खान, शकीला अंसारी, डुमराव से, बली उल्ला अंसारी और दिल्ली से। अगले संदेश करता है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना अर्चित, खुशी गोस्वामी। मधुबनी बिहार से हमें संदेश भेजा है नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी क्रांति, प्रदीप, राजबहादुर, शंभू, करिया और लवरी गुप्ता। छत्तीसगढ़ से मुकेश, गौरव, गरिमा। आप हैं उत्तम नगर से बोधराज, कमला, गीतिका और भानु प्रकाश। पुटानी चौक नारायण स्टेशन से ललन मिश्रा, नूतन, अमन, पारा सर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित का संदेश मिला। शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी। कार्यक्रम में एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं दिल्ली से आरएस स्वीटी, आरके इंदर और स्वीटी छावड़ा। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तनिया का संदेश मिला। आप हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाजिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमद नगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल और जैनेव। गमरी जमशेदपुर से पिपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार। जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति। आप हैं सुरिंदर, अनीता, रोहित, रितेश, प्रतीक्षा, संधु और मैक्स। आप हमें संदेश लिख रहे हैं हरगोबिंद नगर से। अगले संदेश करता है छत्तीसगढ़ से सुमित, सुरेश, रमेश साहू, पूजा देवी, राधा मिश्री देवी। सर गुजा मेन मार्केट से प्रभा बंसल, प्रमिला, आशा, निशा और इनका पूरा बंसल परिवार। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बहू बेगम, शब्द रचना साहिर लुधियावनी की है और इस गीत को धुन से संवारा है रोशन ने।

इस गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर ने, और सतना एमपी से हमें संदेश लिख भेजा है उमंग आकांक्षा और माही मलिक ने। कार्यक्रम में अगले संदेश करता है इस गीत की फरमाइश के साथ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं चंडीगढ़ से, सतीश और बिमला अनेजा। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र, पद्मा टॉकीज, नेपानगर एमपी से। कुम्हार हेड़ा से हमें संदेश लिख रहे हैं सैयद मशरूर, साइना, अक्षा, नाजिया, इब्राहिम, सद्दाम, राम, शरण, विश्वकर्मा, साहिल, विश्वकर्मा, प्रियल, दिव्यांशी हमें लिख रहे हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना, निवान का संदेश मिला। आप हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब, यशोधरा और श्याब्या। अगले संदेश करता है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंद्रू, संस्कृति, पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी का संदेश मिला। आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग सहारनपुर से। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति, श्री क्षीर सागर, संजय चौहान। कार्यक्रम में एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा छत्तीसगढ़ से, निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनौली, तेली बाला से।

अगले संदेश करता है संतोष नामदेव, अभय, अनिल, ज्योति, अजीत, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अन्नु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश, नामदेव परिवार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। राजेश सैन, सुरेखा, शुभम, अक्षय, खंडवा से। और आइए आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म निगाहें से। आवाज है मोहम्मद अजीज की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी सौंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार सावित्री मोहित देव की गजेंद्र हयांश ने। इसी गीत को सुनना चाहा था जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा राघव भानु वर्षा और माधुरी किरण ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी नांदूरा से महाराष्ट्र से प्रमोद बांगड़े वर्षा प्रतीक और संकेत ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा लाड़ो कोयल नानक चंद्र शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल और डुग्गू भाविका का संदेश मिला। आप हैं बक्सर बिहार से राज एसडी अंसारी कबीर नगर लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और दानिश गुनौरी। कार्यक्रम में एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फनबीबाई। आप हमें संदेश लिख रहे हैं झालापाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। अगले संदेश करता है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति रितेश राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान। आप हैं खरसावा झारखंड से सुकरा नायक मंजू जलेश्वर गौरव नायक रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश डॉक्टर दवीरूल बेगम शबनम नजमा बेगम भाभी सरिता गौतम पप्पू राजा खुश दिल संगीता पप्पू महक सुनीता आरजू हसमुखलाल बुलबुल सती संजीव बंटी पूरा खुश दिल परिवार पंजाब से। कार्यक्रम में एक और श्रोता जुड़े हैं मलकापुर महाराष्ट्र से महेशवाणी से शत्रुघ्न धाणे वकील वाल्मीकि नीनाजी और स्वप्निल धाणे। आप हैं कोइस्ते वस्ती से अजय सोनवने करिश्मा अविका और साईशा श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार अविका सोनू अर्चना कुमार डोरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीए राधिका बेबी तन्मय श्याम डोंगराल से। मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हमें संदेश मिला है दुखी राम यादव स्नेहलता और कौशल्या का और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म नगीना से आवाज़ है लता मंगेशकर की शब्द रचना आनंद बख्शी की और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्भी और बेबी हिमाक्ष। लाल चलुत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनद, पोत्रा, गुलशबद से पंजाब से एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं, आयशा जुवरिया। शनि चौक खंडवा से उमा, कुलदीप, जगदीश, प्रभा रानी। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद, नसरीन, नौसरीन, आसना, अंसारी, मोहम्मद के।

दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल। अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल अमीना। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल ईसान और पूजा परिहार का संदेश। कार्यक्रम में अगला संदेश राजनगर कांति निकेतन से रुद्रा भाई रुद्रा रिद्धि सिद्धि साध्वी माधवी गुनगुन।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज की कलाकार हैं वंदना त्रिवेदी। आज हम इन्हीं के स्वर में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार।

0: मेहमान आएंगे। हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज की कलाकार हैं वंदना त्रिवेदी, और आइए आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत इन्हीं के स्वर में।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
1: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए यूपी 112 की अच्छी सेवाएं।
0: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
1: यूपी 112 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: यूपी 112 नंबर 1, सेवाएं अनेक।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीतों का। आज की कलाकार हैं वंदना त्रिवेदी। आप वंदना त्रिवेदी के स्वर में अभी सुन रहे हैं मल्हार। तो आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम की अगली मल्हार।

इसी ब्रज लोकगीत के साथ अब ब्रज लोकगीत कार्यक्रम अभी संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे वंदना त्रिवेदी के गाए हुए मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज की कलाकार थी वंदना त्रिवेदी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि यह समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने

0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अपराह्न 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम आप सुनेंगे वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा श्रावण मास में सोमवार का महत्व। इसके अलावा चर्चा होगी नागपंचमी विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम सावन में भक्त बने जोगी, क्योंकि आ रहे हैं आदि योगी। प्रस्तुत करेंगी कार्यक्रम को दीप्ति शर्मा और दुर्गेश भास्कर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे अपराह्न 1:45 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे अपराह्न 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अमृत लाल नागर जयंती विषय पर। इसके अलावा आज की बात होगी ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता आज के अतिथि। वृत्त साहित्यिक कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज वार्ता। ब्रज के अष्टछाप कवियन को सामाजिक चित्रण। वार्ताकार होंगी डॉ अंजना तिवारी। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा संध्या 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:50 पर। आज

इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी जैविक खाद की उपयोगिता विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंटवार्ता पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुना जा सकेगा संध्या 7:31 पर, और फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 8:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में सुना जा सकेगा रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम News@9 आप सुनेंगे रात्रि 9:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रूपक 3 लोकसौ मथुरा न्यारी। लेखक होंगे डॉक्टर बसंत, प्रस्तुति होगी उपेंद्र रैना की। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद इनायत हुसैन खान का ख्याल गायन, राग होगा सावनी कल्याण धानी।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रियंका खंडेलवाल।

सावन की रिमझिम फुहारें, सावन की रिमझिम फुहारें, हरियाली की बहार, बहनों के संग मना रहे खुशियों का त्यौहार, नागपंचमी की आस्था, सावन की मधुर पुकार, वनिता लोक सुनने वाली बहनों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रियंका खंडेलवाल का नमस्कार। बहनों, सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, रिमझिम बारिश, पेड़ों पर झूले और सावन के गीत वातावरण में एक अलग ही खुशी भर देते हैं। इसी सावन में आता है नागपंचमी का पावन पर्व, जिसे हमारे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाता है और आज हम सभी इस पर्व को मना रहे हैं। आज के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। खासकर हम बहनें आज के दिन परिवार की सुख शांति, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। बहनों, गांव और कस्बों में तो इस पर्व का अपना ही जो रंग है अलग देखने को मिलता है। महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पूजा करती हैं और सावन के लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं। हमारी परंपरा में नाग को भगवान शिव के गले का आभूषण माना गया है। यही कारण है कि नागपंचमी और सावन की शिव भक्ति का संबंध बहुत गहरा है। सावन में जब हम हर ओर भोलेनाथ के जयकारे सुनाई देते हैं, तब नागपंचमी का पर्व इस भक्ति को और भी विशेष बना देता है। बहनों, नागपंचमी केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, यह पर्व हमें प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करना भी सिखाता है। यह हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाग खेतों में चूहों और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, इसीलिए नागों को सांपों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नाग देवता के प्रति श्रद्धा रखें, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा रखें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाएं, जिससे प्रकृति मुस्कुराएगी तो हम भी मुस्कुराएंगे और जब हम मुस्कुराएंगे तो इस प्रकार कुछ गुनगुना पाएंगे।

गीतों के इन सुरों के साथ आज का दिन और भी मनभावन हो गया। बहनों, सावन की बात हो और सावन के सोमवार का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सोमवार के दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं। सोमवार का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब महिलाएं विशेष रूप से परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित युवतियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। बहनों, कहते हैं भक्ति में शक्ति है, विश्वास में उजियारा, शिव के नाम से मिलता मन को सहारा, सच्चे मन से जो प्रभु को शिव जो शीश नवाता है, मुश्किल राहों में भी साहस पाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज अपनी बहनों को सुनवाते हैं विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सावन में भक्त बने जोगी, क्योंकि आ रहे हैं आदि योगी। प्रस्तुति है दीप्ति और दुर्गेश भास्कर की, संयोग करता है देवेंद्र सारस्वत। तो हम और आप मिलकर सुनते हैं यह विशेष कार्यक्रम।

0: वह शेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वह उसके जैसा भेष है। वह नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है, विलय भी वह, प्रलय भी वह, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, उसी के हो गए वह जहां सुना शिवे शिवा।
1: शिव और शक्ति का अद्वैत अर्धनारीश्वर रूप का रहस्य। जब संसार में स्त्री और पुरुष को अलग समझा, तब शिव ने अपने शरीर से उत्तर दिया, मैं अकेला अधूरा हूँ। और तभी प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर, एक शरीर दो शक्तियाँ, शिव और शक्ति का अद्वैत। ये कोई प्रतीक मात्र नहीं, ये ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत था कि सृजन तभी संभव है जब शिव में शक्ति हो और शक्ति में शिव हो।
0: अर्धनारीश्वर रूप में आधा अंग शिव का है, शांत, तपस्वी और सन्यासी, और आधा शक्ति का, जागृत, सृजनशील, मातृभाव से पूर्ण। यह रूप हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष विरोध नहीं, पूरक हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं।

0: बिना विष को पिए और विषमता को पचाए कोई भी महान नहीं बन सकता। देवादिदेव भगवान महादेव का इस श्रावण मास में पूजन करते हुए उनके पावन जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने और समझने योग्य है। जो अमृत पीते हैं वो देव बनते हैं, और जो राष्ट्र, समाज और प्रकृति की रक्षा के लिए विष को भी प्रेम से पी जाएं, वो महादेव बन जाते हैं।
1: बिना विष को स्वीकार किए कोई अमृत तक पहुंच ही नहीं सकता है। संघर्ष, दुख, प्रतिकूलता, अभाव, ये सब हमारे जीवन को निखार रहे हैं। भगवान महादेव का जीवन बताता है कि मनुष्य के संकल्प के सामने बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। बस हमें चुनौती से लड़ना आना चाहिए।

इस मौसम में अपनी नजर उठाकर जिस ओर भी देखेंगे, हर तरफ पृथ्वी स्नान में डूबी नजर आएगी। जगह जगह बिखरे पानी से लबालब तालाब अपने अल्लड़पन की कहानी सुनाएंगे। पौधे अपनी डालियों पर नई कोपलें, नई पत्तियां लेकर चमकते हुए तन कर पहला सलाम कर रहे हैं। यही तो खूबियां हैं सावन की, और हो भी क्यों नहीं, आखिर ये महीना शिव का परम प्रिय महीना है। इसके बारे में हमें जानकारी

0: रहे हैं।
1: मैं राकेश तिवारी एडवोकेट, विधि एवं मीडिया प्रभारी द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। श्रावण मास की जहाँ बात हम कर रहे हैं, तो श्रावण मास प्रारंभ होता है चतुर्मास्या से। वो देखिए, ठाकुर जी जो शिव जी हैं उनको भोलेनाथ भी कहते हैं, और भोलेनाथ पे केवल अगर आप जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भोलेनाथ उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी अच्छी एक कथा है कि

0: कर पहला सलाम कर रहे हैं। यही तो खूबियां हैं सावन की, और हो भी क्यों नहीं, आखिर ये महीना शिव का परम प्रिय महीना है। इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं,
1: मैं राकेश तिवारी एडवोकेट, विधि एवं मीडिया प्रभारी, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। श्रावण मास की जहाँ बात हम कर रहे हैं, तो श्रावण मास प्रारंभ होता है चतुर्मास्या से। वो देखिए, ठाकुर जी जो शिव जी हैं उनको भोलेनाथ भी कहते हैं, और भोलेनाथ पे केवल अगर आप जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भोलेनाथ उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी अच्छी एक कथा है कि एक भक्त जो भोलेनाथ का भक्त है, वो डेली शिव जी की पूजा करने जाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, क्योंकि बाबा को बेलपत्र है और जल, इसके अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं है। आपने किसी भोले बाबा के श्रृंगार नहीं देखे होंगे। एक भक्त जाता है और वो उसको एक आवश्यकता होती है, चोर आता है, भोले बाबा पे पैर रख के उस घंटे को ले जाता है। भक्त कहता है कि मैं पूरे दिन से सेवा कर रहा हूँ, बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, बाबा जी ये आपका घंटा चुरा के ले गया। तो भोले बाबा उसको जवाब देते हैं, नहीं, तुम केवल बेलपत्र और फूल चढ़ा रहे हो और जल चढ़ा रहे हो, ये तो खुद मेरे ऊपर चढ़ गया, इसकी आवश्यकता थी, इसने मुझे ऊपर खुद चढ़ के ये सब चीज ली है। इसलिए भोले बाबा कहने का तात्पर्य क्या है कि शिव जी इतने भोले हैं और इतनी सरलता से प्रसन्न होते हैं, तो ये शिव भक्तों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका।
2: पौराणिक दृष्टिकोण से श्रावण माह में सोमवार का विशेष महत्व है। वार प्रवृत्ति के अनुसार सोमवार में हिमांशु अर्थात चंद्रमा का ही दिन है। स्थूल रूप में अभिलक्षणा विधि से भी यदि देखा जाए तो चंद्रमा की पूजा भी स्वयं भगवान शिव को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण भगवान शिव का सिर ही है।
0: रौद्र रूप धारी देवादिदेव महादेव, भस्माच्छादित देह वाले भूत भावन भगवान शिव, जो तप जप तथा पूजा आदि से प्रसन्न होकर भस्मासुर को एक ऐसा वरदान दे सकते हैं कि वो उन्हीं के लिए प्राणघातक बन गया, वह प्रसन्न होकर किसको क्या नहीं दे सकते। तो सावन के सोमवार में व्रत करके हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, और पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और व्रत का संकल्प लेकर शिवजी को पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करके फिर शिव मंत्रों का जाप करें और शिव कथा सुनें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अगले दिन व्रत का पारण करें। इस प्रकार आपके सावन के सोमवार के व्रत पूर्ण होते हैं।
2: भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान को फल या मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। शाम को चंद्रमा को जल का अर्घ दें। अगले दिन सुबह फिर से शिव पूजन करके फल आहार या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें।

अनुसार इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा आती है, जिसके नाम पर इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। हिंदू पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पांचवा महीना

0: आराधना करते हैं। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। यह पूरा महीना भक्ति में गीतों और धार्मिक माहौल का होता है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। इस माह के खास दिनों पर हिंदू उपवास रखते हैं और पूरे महीने शुद्ध व शाकाहारी भोजन करते हैं। सावन का महीना केवल भक्ति के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इस महीने में कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। यह भी एक कारण है जिसके लिए हिंदू धर्म में सावन महीने की मान्यता इतनी अधिक है। श्रावण महीने में मनाए जाने वाले मुख्य हिंदू त्योहारों में रक्षाबंधन, नागपंचमी और हरियाली तीज हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव सावन महीने की पूर्णिमा के 7 दिन के बाद अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसके बारे में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान से सेवायत पंडित राम अवतार अवस्थी।
1: गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाता है, तो श्रावण का महीना वैसे तो भगवान शिव का है और शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव सबका कल्याण करते, शिव माने कल्याण। श्रावण के सोमवार में भगवान शिव का रुद्राभिषेक या जल चढ़ाते हैं हम, तो कहते हैं वो सीधा भगवान शिव को प्राप्त होता है, क्योंकि सब देवताओं के महीना बटे हुए हैं। जैसे कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण का है, इसी प्रकार से श्रावण का महीना भगवान शिव का है। आपने पूरी साल कोई पूजा पाठ नहीं किया, यदि श्रावण के सोमवार में और श्रावण के महीना में भगवान के ऊपर एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया तो आपके जीवन की सारी तपस्या सफल हो जाती है। और श्रावण का महीना तो बहुत सुहावना है और इसका संबंध हमारे राधा कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रावण के महीना में भगवान बाल गोपाल अपने जो है झूला में झूलते हैं और राधा रानी भी झूला में झूलती हैं। तो सावन का झूला इतना पवित्र है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी इसका आनंद लेते हैं और साथ में भक्तों को भी आनंद दिलाते हैं। तो झूला का महत्व भी है, झूला घलते हैं सावन के महीना में, भगवान जुगल जोड़ी के स्वरूप में राधा रानी को झुलाते हैं और राधा रानी को सखियां झुलाती हैं। तो वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है कि श्रावण के महीना में भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण दोनों का संयोग बना हुआ है। श्रावण के महीना में ये दोनों की लीलाएं हैं और दोनों ने लीलाएं की, और इसलिए वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है कि श्रावण का महीना सभी महीनों में अति पवित्र उत्तम और जो है देवताओं के प्रतीक है। ब्रज में सारे देवता ये लीला दर्शन देखने के लिए ब्रज में पधारते हैं। हमारे भगवान शिव तो गोपेश्वर के वेश में

0: बैठे विराजमान रहते हैं, और भी जो देवता हैं 33 करोड़ वो सब ब्रज में आते हैं। तो श्रावण के महीना में भगवान राधा कृष्ण का झूला का दर्शन करना, उनको झूला झुलाना, तो ये मान लीजिए कि सभी देवता हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरण करते हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि भाव ही मैट सकहित पुरारी, भगवान शिव की पूजा करने से आपका भाग बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, क्योंकि सब उन्हीं के हाथ में है। महादेवों के देव महादेव मृत्यु को भी टालने वाले हैं। तो श्रद्धा और प्रेम के साथ में भगवान शिव के देवालयों में देखा होगा श्रावण के महीना में बहुत भीड़ होती है, सभी श्रद्धा विश्वास के साथ जल चढ़ाते हैं। और भगवान शिव की तो ऐसी लीला है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे भक्त्या पृच्छति, आप पे कुछ नहीं हो, एक लोटा जल ही चढ़ा दो, एक पुष्प चढ़ा दो, आग का धतूरे का फल चढ़ा दो, यदि बेल पत्र चढ़ा दो, एक बेल पत्र चढ़ाने से श्रावण के महीना में त्रिगुणा त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तोत्रदायधम त्रिजन्म पाप संहारम विल पत्रम शिवार्पणम, एक विल पत्र अर्पण करने से भगवान शिव के ऊपर हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं, देवों के देव महादेव हैं।
1: सावन का महीना लोगों को ईश्वर से जुड़ने का और भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हर तरफ मंदिरों में लोगों की भीड़, भजन कीर्तन की आवाज, मंत्रोच्चारण, अभिषेक और बड़े बड़े मेलों का आयोजन इस माह की महत्वता को और भी बढ़ा देता है। सावन के महीने में महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने परिवार के स्वस्थ रहने की कामना करती हैं। भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ सावन के महीने में ही लगती है। भारत में प्रसिद्ध भगवान शिव के भक्तों द्वारा किए जाने वाली कांवड़ यात्रा भी सावन के महीने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरी की जाती है।
2: शिव भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों खास तौर पर गंगा का जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस पवित्र यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कांवड़ को कंधे पर रखकर चलना। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी धार्मिक और पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक सबसे प्रचलित कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया तब भगवान शिव क्रोधित हो गए। रावण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगाजल से उनका अभिषेक किया। कहा जाता है कि रावण ने ही पहली बार गंगाजल को एक विशेष विधि से कांवड़ में भरकर लाया था। वह जल लाने के लिए उसने कांवड़ का उपयोग किया और उसे अपने कंधे पर रखकर लाया। इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी शिव भक्त कांवड़ को कंधे पर रखकर चलते हैं।
1: कांवड़ यात्रा

भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर है। ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से सभी पापों का नाश होता है। ये माना जाता है कि पवित्र गंगाजल को कंधे पर रखकर चलने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख संपत्ति और संपदा बनी रहती है।

0: सावन का महीना किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय किसान कई प्रकार के अनाज, सब्जी और फूल आदि की बुआई करते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी आदि की बुआई सावन के महीने में की जाती है। कहने को सावन का महीना शिव आराधना का महीना होता है। साथ ही सावन का यह महीना सभी के लिए राहत का महीना भी होता है। अप्रैल से जून तक की भीषण गर्मी से मनुष्य और जीव दोनों त्रस्त हो जाते हैं। पेड़ पौधे, नदी नहर, तालाब और कुएं आदि सूख जाते हैं और कई स्थानों पर तो सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, जो लोगों को बदहाल कर देता है। सावन के महीने में होने वाली तेज बारिश पृथ्वी के इस बदहाल वातावरण में नई जान देता है और हर तरफ खुशी की एक नई लहर दिखने लगती है।
1: सावन के महीने का महत्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। पुराणों में लिखित समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। ये महीना भक्ति के महीने के साथ ही जीवन का भी महीना है। सावन के महीने में किसान नई फसल उगाते हैं और प्रकृति भी सावन महीने में नए पेड़ पौधों को जन्म देती है। सावन का ये महीना मनुष्य, पशु पक्षी सभी के लिए खुशहाल मौसम

0: शिव सत्य हैं,
1: शिव हैं अनंत,
0: शिव हैं अनादि,
1: शिव हैं भगवंत,
0: शिव हैं ओमकार,
1: शिव हैं ब्रह्मा,
0: शिव हैं शक्ति
1: और शिव ही हैं भक्ति।

बहनों, हमने और आपने सुना विशेष कार्यक्रम सावन में भक्त बने योगी, क्योंकि आ रहे हैं आदि योगी। प्रस्तुति थी दीप्ति शर्मा और दुर्गेश भास्कर की। इसी के साथ बहनों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो मुझे यानी प्रियंका खंडेलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी प्रियंका खंडेलवाल। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ है और साथ में है लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है अपनापन।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को फिल्म इजाजत में। शब्द रचना गुलजार की थी और इस गीत को धुन से संवारा था आरडी बर्मन ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30वें दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद

0: सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
1: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है।

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि

0: अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोवा में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज

0: के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
1: और अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
0: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया।
0: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।
4: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
3: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
4: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
6: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
7: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
6: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
8: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
3: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
5: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
6: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
3: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
6: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो।

0: अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
1: दादी बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
0: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
1: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
0: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
1: दादी मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
0: अरे बेटा लेकिन स्कूल का क्या होगा?
1: मैंने कहा ना मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
0: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
1: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
3: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश अब कैसी तबीयत है?
1: जी दादाजी अच्छा नहीं लग रहा है।
3: अरे अरे अरे अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है, अजी सुनती हो?
0: जी।
3: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
0: जी जी अभी लाई। लो बेटा काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
1: ओ ये तो बहुत कड़वी है ये।
0: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
3: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
1: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए, सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
3: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
3: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा।

0: ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
1: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
0: जी दादाजी।
3: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, बस अभी आई, तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा।
0: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुड़हन में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
1: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब
8: जी सर।
7: साहब कमाल जी, कमाल जी से कमेंगे।
9: हमारे तीर कमाल जी से
7: हमला करो।
10: अबुआ राज,
11: अबुआ
10: तिसुम,
11: अबुआ
10: राज,
11: अबुआ तिसुम।
5: अबुआ राज, अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
12: '1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की, जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
12: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
12: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और

0: साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
1: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
2: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
1: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
2: जी।
1: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
2: जी, ये मेरी जमीन है।
1: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
2: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
1: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
2: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
1: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
3: जी सर,
1: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
3: जी सर।
1: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
3: जी सर।
1: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
3: जी सर।
2: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो। साहब ऐसा मत करो।
1: चलो हटो।
2: साहब
1: आओ।
2: साहब
1: आओ। ए, ऐसे नहीं मानेगा।
2: साहब मत करो। साहब
1: चल। सिपाही।
3: यस सर।
2: साहब
1: इसको हंटर मारो।
2: साहब।
3: जी सर।
0: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
4: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
4: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
5: भाई कान्हू।
2: जी भैया।
5: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
2: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
5: क्या हुआ?
2: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
5: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
2: हाँ भैया।
5: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
2: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
5: तो फिर
2: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
5: हाँ, ठीक कहा तुमने।
2: हाँ,
5: ऐसा ही करेंगे।
2: जी भैया।
4: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
0: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनप

0: गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिद्धो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
1: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
0: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिद्धो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिद्धो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
2: अंग्रेजों का अत्याचार तो बढ़ते ही जा रहा है। अरे हमारी जमीन जब्त कर दिया।
3: अरे अंग्रेजों ने तो आज बताओ कुछ फैसला मारा था।
4: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
5: सही बोले, सही कहे।
4: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
1: हाँ सही कहा।
4: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
5: तो भैया सही बात
2: कह रहा है, एकदम सही कह रहा
4: है। हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
2: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
4: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
6: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
4: अब करो या मर जाओ।
6: अब करो या मर जाओ।
4: अबुआ राज अबुआ किसुम।
6: अबुआ राज अबुआ किसुम।
4: अबुआ राज।
1: इस सभा में सिद्धो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया।
7: मारे, मारे, मारे, मारे, मारे, मारे, मारे, मारे, मारे।

0: उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।

0: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
1: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
0: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कानू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अतिथि क्रम में आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता में अमृतलाल नागर से गोपाल कृष्ण कौल की बातचीत आपको सुनवाते हैं।
1: नागर जी, साहित्यकार के नाते सारा देश और दूसरी भाषाओं के लोग भी आपसे परिचित हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है कि आपके व्यक्तित्व में ये जो लखनऊआपन है, पता नहीं लखनऊआपन शब्द आपको पसंद है?
2: लखनवी कहिए।
1: लखनवी, लखनवी तो फिर वो शायराना नाम हो जाता है। तो
2: तो
1: ये
2: हैरानत बनाना आप हम लोग जानते नहीं।
1: साहित्य में तो आप बड़ों बड़ों की बता देते। तो ये आपको लखनऊ की ऐसी क्या खास चीज है, या परंपरा है, या लखनऊ का वो पुराना रस है जिससे आपको लगाव है?
2: देखिए गोपाल कृष्ण भाई, लखनऊ इस नाचिस के नस नस में पिन्हा, होश जब से संभाला तभी से। और मेरे ख्याल में मैं आपको बहुत मज़े से सन 21 के ज़माने से तो लखनऊ की तस्वीरें दे सकता हूँ, स्मृति में अब भी सजीव हो उठती हैं। बहरहाल, आपने एक ऐसा जिक्र किया शहर का जो कि अब हमको भी लखनऊ में लखनऊ नहीं मिलता है, फकत चारबाग स्टेशन पर उसका नाम ज़रूर लिखा हुआ। और एक ज़माना था, वैसे मेरे लिए आज भी वो हकीकत है कि खुदा आबाद रखे लखनऊ को, फिर गनीमत है, नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। लखनऊ में अब भी गो मैंने आप जैसे आपसे निवेदन किया कि लखनऊ में अब लखनऊ मुझे भी ढूंढे नहीं मिलता है, फिर भी दम गनीमत है कि कभी न कभी कोई न कोई एक ऐसा शख्स मिल जाता है जिसको जिसको देखकर ये कहना पड़ता है कि हाँ भाई, लखनऊ है लखनऊ।

0: लखनऊ के तीन चीजें बुजुर्ग लोग कहा करते थे, उन्हीं की बात याद है। लखनऊ की नफासत, नज़ाकत और बलागत, ये तीन चीज़ें बड़ी मशहूर थी। वो नज़ाकत के नाम पर तो बहुत से कार्टून बन गए, लोग तरह तरह से उसके नज़ाकत को डिफाइन करने लगे कि ककड़ियाँ उनके भी छिलके उतार रहे हैं और उनको भी सूंघ सूंघ करके मांस फेंक रहे हैं। तो वो तो बात नहीं है, बात असल में है नफासत और नज़ाकत और बलागत, तीनों वैचारिक दृष्टि से आप यदि देखें तो बहुत ही उम्दा बात है। बात सफाई से कहनी चाहिए, बात इस तरह से कहनी चाहिए, पेश करनी चाहिए जिससे कि आप कठोर से कठोर बात आपको चुभे नहीं, ज़रा नज़ाकत से कहनी चाहिए और बात साफ कोई भी हो जाए, बलागत हो, उदात्तता हो, बड़ा दिल हो, छोटे दिल से बात नहीं करनी चाहिए। लखनऊ के यह तीन गुण पहले हमें खूब मिलते थे, हालांकि वो ज़माना पतनशील विलासी लखनऊ का ही अधिक था, फिर भी उसमें वो बड़प्पन, वो बलागत, वो नफासत अक्सर हमको मिल जाती थी। मैं आपसे अर्ज करूं, पुराने लखनऊ में अगर मैं तो रहने वाला हूं ही, पुराने लखनऊ का चौक का रहने वाला हूं, पुराने लखनऊ में एक वक्त वो था जबकि हर हिंदू बच्चे को इस बात की तालीम दी जाती थी कि मुसलमानों से किस तरह से व्यवहार करो, बात करो, उनसे उनके धर्म के संबंध में कैसी बातें करो, थोड़ी सी जानकारी हमको दी जाती थी। मुसलमान परिवारों में भी आपको ऐसे अनेक मिल जाते थे जो कि हिंदू रीति रिवाजों को खूब अच्छी तरह से जानते थे और हिंदू मानस की भावनाओं की वो सुरक्षा का ध्यान बराबर रखते थे। यह जो एकता की भावना थी, ये अब ये राजनीतिक जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की हमारी, तो राजधानी बनने के बाद लखनऊ तो लखनऊ वालों का नहीं रहा इतना ज्यादा। वो अवध में एक कहावत है, कहाँ कहाँ के मुर्दे और नाना मऊ का घाट। लखनऊ शहर हमारा नाना मऊ का घाट बन गया। तरह तरह की गलाजत, तरह तरह की छोटी ओछी बातें ये नज़र आ जाती हैं तो बुरा लगता है।
1: नागर जी, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं
0: जी,
1: लखनऊ में जिसे कह सकते हैं कि नवाबी ज़माना
0: जी,
1: या उसका असर जिन लोगों पर रहा उनका ज़माना
0: जी,
1: तो उनमें जो ख़ास बातें थी उसको अपनाए हुए कुछ पुराने लोग या पुराने रीति रिवाज मानने वाले लोग आपको अब भी वहाँ मिलते हैं?
0: हाँ, ऐसा नहीं, मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन अब तकलीफ होती है। पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि दूर से हम तैयार रहते थे हाथ जोड़ने के लिए या आदाब पेश करने के लिए, दूर से ही सड़क को कोई आ रहा है, कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है जान पहचाने तो हम थे। अब उसी लखनऊ में देखता हूँ कि बच्चे फला दूर से आ रहा है कोई बड़ा आदमी तो नज़र कतरा जाएंगे कि देखना ना पड़े, सलाम ना करना पड़े। फर्क आ जाता है, लेकिन अब भी कई ऐसे ख़ानदान हैं जहाँ के आपको होली के दिन मुसलमान रंग खेलने आते हैं, वो बाकायदा मिलने आते हैं और होली की मिलनी करते हैं। पुराने ज़माने में तो मुझे अपने बचपन का तो खूब अच्छी तरह से होश है कि कई अच्छे ख़ानदानों से, मुसलमानी ख़ानदानों से बच्चों के लिए मिठाई आती थी, पुराने घरों से बच्चों के लिए त्योहारी के मतलब कुछ बख्शिश भी आती थी। इसी तरह से हिंदुओं के घर से भी ईद के लिए, ईद के मौके पर बाकायदा कुछ न कुछ मिठाई वगैरह जाएगी, बच्चों के लिए कुछ जाएगा। ये जो तौर रस्म रीत रस्म रिवाज आपस में घुले मिले थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे,
1: कम हो गए,
0: अब बहुत ही कम हो गए।
1: अच्छा नागर जी, जो नवाबी

0: बहुत थे पुराने
1: जी,
0: जैसे तीतरबाजी, बटेरबाजी, मुर्गे लड़ाना, बकरे लड़ाना।
1: अब देखिए मुर्गे
0: उनके अपने मनोरंजन थे, वो अभी कायम है कि खत्म हो गए?
1: नहीं, मुर्ग अब भी लड़ते हैं, तीतर भी जरूर हैं अभी, तीतर बटेर का भी शौक बाकी। एक जमाने में तो बटेर लखनऊ का बादशाह था, लोग अच्छे अच्छे, शाम को मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुट्ठी में बटेर है, उसमें बाकायदा उसको मुठियाते हुए, बीच बीच में उसको चूमते हुए लोग आपको अक्सर बाजार में शाम के वक्त दिखलाई पड़ जाते थे। बहुत से ऐसे होते थे अंगूठे पर चमड़ा बांध करके बाज लिए हुए घूमते थे, और जरा भी कोई चीज फौरन उड़ा कर दे देते, उसके आंख से टोपी हटा करके और उसको उड़ा देते तो जाके अपना शिकार ले आता था। ऐसे अब भी मेढ़ों की लड़ाई होती थी, अब कम होती है। अब तो वो लखनऊ महोत्सव हर साल इधर दो तीन साल से पर्यटन विभाग ने शुरू किया है, तो उस लखनऊ महोत्सव में कभी कभी जानवरों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई ये नज़र आ जाती है। मगर जब सरपरस्त नहीं रहते तो कलाएं गायब होने लगती हैं। वैसे एक बात आपसे निवेदन करूं, ये जो तीतर बटेरों की, बटेरों को छोड़ दीजिए, पशुओं की, पक्षियों की लड़ाई के जो दंगल होते थे ये बहुत पुराने हैं। यानी वात्स्यायन के कामसूत्र में आपको उनके नागरिक जीवन में इनके हवाले मिलते हैं, और वो यथावत मुसलमानी शासन ने, मुसलमानी शासकों ने अपना लिए थे। वो मुसलमानी समय तक बहुत से ऐसे रीत रिवाज जो हिंदुओं के थे वो यथावत उन्होंने ले लिए। जैसे आपसे कहूँ, बादशाह बेगम गाजीउद्दीन हैदर शाह की पत्नी थी, उन्होंने छठी भी बनाने शुरू की, हजरत अली के, कृष्ण जी की छठी बनती थी, इस तरह से एका कर लिया। नसीरुद्दीन हैदर में, हैदर ने चूँकि यहाँ हिंदुओं के मंदिर में देवदासियाँ रहती थी तो वो अछूतियाँ रख ली, इमाम बारह इमाम के, इमाम दो वजदा के लिए अछूतियाँ रख ली। इस तरह की बहुत घुली मिली परंपराएं आपको उस जीवन में दिखलाई पड़ जाती थी, अब वो उनका हो गए।
0: नागर जी, लखनऊ से इतनी आपको मोहब्बत है और इतनी जानकारी है, इसका असर आपके उपन्यासों में और रचनाओं में भी देखने को मिलता है
1: जी।
0: लेकिन जब आप ऐसी रचना लिखते हैं जिसमें लखनऊ का बिल्कुल असर ना आए, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं
1: आप? ऐसी रचनाएं तो प्रायः एक ही आज कह सकता हूँ, मानस के हंस में, जैसे तुलसीदास बाबा का लखनऊ से कोई संबंध नहीं है, वैसे बूंद और समुद्र में भी आपको बोलता लखनऊ है, हमारे गली मोहल्ले हैं, अमृत विश्व में भी आपको उसी प्रकार का परिवेश मिलेगा।
0: ये नाचो बहुत गोपाल में भी,
1: बहुत गोपाल में भी किसी हद तक वो असर मिलेगा आपको। मैं बेहोशी में भी लखनऊ छोड़ नहीं पाता, ये मेरी मजबूरी।
0: नगर जी,
1: हाँ,
0: ये जो पुराने नवाब थे, आप तो चौक में रहते हैं, उधर शायद उनके खानदानी ऐसे रहते हों
1: जी हाँ,
0: जिन्हें पेंशन मिलती थी
1: जी हाँ,
0: लेकिन हैसियत से नवाब नहीं थे वो,
1: अब
0: उनके क्या हाल है?
1: अब तो एक जमाने में, यानी आज से 35 बरस पहले तक ऐसे इक्के वाले भी आपको शहर में मिल जाते थे जो अपने आप को नवाबी खानदान से जुड़ा हुआ बतलाते थे। अब आपको, अब इक्के ही नहीं रहे उनके इक्केवानों के कोई जिक्र क्या करें, अब तो टैक्सियां चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, टेम्पोस चलते हैं, वो जिक्र नहीं रहा, वो नवाबी घोड़े नहीं दौड़ते, वो नवाब नहीं दौड़ते, तो वो तो किस्से कहानियों की बातें हो गई, अब आपको नहीं मिलेंगी। बाकी वसीका गाजीउद्दीन हैदर शाह के वक्त में कुछ वसीक़े उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा कर लिया था, जो कि कुछ ख़ानदानों को मिलते थे। वो वसीक़े बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक एक पाई के हो गए, भला उनसे कहाँ गुजारा होगा, और भला उसकी उस एक पाई की हैसियत पर कोई अपने को आपको कब तक नवाब कहेगा, वो ज़माना नहीं रहा, इसलिए वो बातें भी ख़त्म हो गई।
0: नागर जी, आपको लखनऊ का कोई शौक ऐसा रहा है जो ऐसा लगा जो छूटते ना छूटा हो?
1: अब पान का गुलाम तो हूँ ही।
0: और

0: बाकी एक ज़माने में हुक्के का भी बहुत शौक था, अब तो छूट गया, लेकिन पान का गुलाम तो हूँ। दूसरे आपका अदब करने के लिए मजबूर हूँ, आप छोटे हों या बड़े हों, ये भी मैंने लखनऊ से सीखा है। इंसान को प्यार करना, इंसान का अदब करना, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, बड़ा हो, अमीर हो, कोई भी हो, ये लखनऊ ने मुझे सिखाया और लखनऊ के लिए इसके प्रति मैं कृतज्ञता जीवन के अंत तक अनुभव करूँगा।
1: नागा जी, आप शुरू में काफ़ी अरसे तक फिल्मी लेखक के रूप में काम करते रहे।
0: हाँ।
1: और आपने अनेक फिल्मों के लिए लिखा।
0: जी हाँ।
1: उदय शंकर की कल्पना जैसी ऐतिहासिक फिल्म,
0: हाँ,
1: उसके लिए भी लिखा था। फिर आप वापस आ गए, फिर आपको फिल्म ने अपनी तरफ नहीं खींचा।
0: सन 40 में मैं गया था बम्बई और 40 से 47 तक रहा बम्बई में भी रहा। एक पिक्चर कोल्हापुर में भी बनाई, मास्टर विनायक की दो पिक्चरें लिखने के लिए मद्रास भी किया था, एक उदय शंकर की कल्पना जैसा कि आपने कहा और एक सुबलक्ष्मी की मीरा। मीरा फिल्म बनी थी तमिल में, पहली भारतीय फिल्म है जिसको कि मैंने डब किया था। उसके पहले कुछ रूसी डॉक्यूमेंट्रीज डब की थी, पहला प्रयोग किया था उन पर, और पहली भारतीय फिल्म है मीरा जिसको डब किया था। और वैसे भी अनेक लगभग 20-22 चित्र संवाद सिनेरियो मेरे नाम से उस जमाने में निकले। पर गोपाल कृष्ण भाई हो के गया था कि वो ऐसा लगता था कि एक बंधे हुए पानी में हाथ पैर मारना है, वही नुस्खा हीरो हीरोइन विलन ऊब गया था। हाँ, ये ज़रूर है कि फिल्म की आमदनी ने, बहुतों ने ऐश किए हैं उस आमदनी पर, मैंने भी दो ऐश किए। अखंड भारत जो अविभाजित भारत था, करीब करीब हर जगह की ढहियाँ मैंने छू ली। साल में एक दो चक्कर निकल जाता था जब काम से जरा अवकाश पाता था, और पूरे भारतीय संस्कृति का एक रूप मेरे सामने आ गया फिल्म की कमाई की बदौलत। उसके लिए मैं आज भी उस फिल्मी जीवन का कृतज्ञ हूँ। पुस्तकें जरूर कुछ ऐसी खरीद लें जो अब नहीं खरीद सकता, अब वो हैसियत नहीं, और वो पुस्तकें भी मेरी बड़ी भारी थाती हैं। देश दर्शन का से एक जो व्यापक अनुभूति होती है संस्कृति की, जीवन के दर्शन की, रहन सहन रीत रिवाजों की, उनकी तुलनात्मक अध्ययन की, वह सब जरूर मिला। और इससे ज्यादा मुझे फिल्म क्या दे सकते थे, भागा हिंदुस्तान आजाद हुआ, मैं भी आजाद हो गया,
1: बल्कि आप ही फिल्म को कुछ दे सकते थे। अच्छा नागर जी, आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे साहित्यकार जिन्होंने काफी लिखा विभिन्न दिशाओं में और विधाओं में, आपकी उम्र तक आते आते बड़े गंभीर और कुछ आचार्यत्व की पदवी पर बैठकर कुछ अजीब सी मतलब जीवनचर्या बना लेते हैं, लेकिन आप में जो जिंदा दिली है कि नौजवान भी अपने को आपके नज़दीक समझते हैं, ये इसका राज क्या है?
0: भाई सीधी सीधी बात है, मैं तो हूँ किस्सा को भूलता नहीं, और मेरे लिए हर आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मेरा पात्र, कौन जाने कौन सब मेरा पात्र बने, तो इसलिए। और मैं तो सबको अपना, अभी नाचे बहुत गोपाल के सिलसिले में डेढ़ दो बरस जीवन लखनऊ की एक ही वर्ग ऐसा बचा था जिसके इंटरव्यूज नहीं ली थी, तो वो भी ले रहे, बाकी हिंदू मुसलमान कोई जाति वर्ण वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कि मैंने इंटरव्यूज न लिए हूँ अपने शहर के। उपन्यास उन्हीं के बहाने बनते हैं, उन्हीं से तथ्य निकाल करके बनते हैं, और इसलिए मैं कैसे ये सब करता हूँ, मतलब चप्पल चटकाऊ लेखक हूँ, आज भी रिक्शे वालों के सेवा में घूम रहा हूँ, शिष्य हूँ अधिक आचार्य तो आप कहते होंगे, मैं मान लेता हूँ, मैं आगे आपकी बात काट नहीं सकता, लेकिन मैं उससे बहुत दूर हूँ।
2: आज के अतिथि इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, अमृतलाल नागर से गोपाल कृष्ण कौल की भेंटवार्ता अभी आपने सुनी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात करते हैं

ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। इस क्रम में ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित एवं पक्का घर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके अंतर्गत और इसी के माध्यम से ऐसे परिवारों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसके लिए पात्रता और लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता आवश्यक है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और वंचित परिवारों को उचित प्राथमिकता मिलना सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से योजना की निगरानी और क्रियान्वयन अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह जरूरतमंद परिवार को सम्मानजनक आवास मिले, यही ग्रामीण विकास और सशक्त समाज की मजबूत नींव है। और आइए अब कार्यक्रम में चलते चलते सुन लेते हैं ये गीत।

दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म भाग जॉनी से। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम युववाणी अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। चलते चलते बस यही कहना

चाहेंगे, जिंदगी छोटी नहीं खूबसूरत है, बस उसे मुस्कुराकर और जिंदा दिली से जीना आना चाहिए। इसी सुविचार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही

0: है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 6:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं ब्रज वार्ता, ब्रज के अष्टछाप कवियन को सामाजिक चित्रण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अंजना तिवारी। संध्या वंदन भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:50। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय और जैविक खाद की उपयोगिता। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा एक भेंट वार्ता, पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं। जानकारी देंगे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। शाम सुहानी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:00। देशभक्ति परक रचनाएं आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर, सुहाने तराने आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं रूपक, तीनों लोकों से मथुरा न्यारी। लेखक होंगे डॉक्टर बसंत, प्रस्तुति उपेंद्र रैना की होगी।

रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद इनायत हुसैन खां का ख्याल गायन।

रात्रि 11 बजे होंगे हिंदी समाचार, 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन।

हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। देशगान कुछ ही पलों में।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज वार्ता, ब्रज के अष्टचाप कवियन को सामाजिक चित्रण। प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर अंजना तिवारी।
1: पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गुसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी ने संवत 1602 में अष्टचाप के प्रसिद्ध भक्त कवियन की स्थापना करी हती, जिनमें ते चार श्री वल्लभाचार्य के और शेष चार श्री गुसाई जी विट्ठलनाथ जी के शिष्य भये, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के और गोविंद स्वामी, नंददास, चीर स्वामी, चतुर्भुज दास, श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य भये। ये आठों भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर की नित्य लीला में सदा श्री ठाकुर जी के सखा के रूप में बिनके संग ही रहते, ताते इनको अष्ट सखाहु कहो जाए है। अष्ट छाप के आठों भक्त कवि समकालीन हते, इनको प्रभाव आज देखो जा सके है। ये सब श्रेष्ठ कलाकार, संगीतज्ञ और कीर्तनकार हते। गुसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी ने इन अष्ट भक्तन पे अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, ताते इनको अष्ट छाप कहो जाए है। इनमें काव्य सौष्ठव की दृष्टि सो सूरदास प्रथम और नंददास द्वितीय है। सूरदास पुष्टि मार्ग के नायक कहे जाए हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार सूरदास जन्मांध थे। बालपन में घर को त्याग करो, पाछे व्रज में आए श्री वल्लभाचार्य जी सो दीक्षा लई, ता पाछे प्रभुन की लीलान के पद श्री ठाकुर जी के सन्मुख गावते। इनके या पद में नंद महोत्सव को बड़ो सुंदर वर्णन है। सुपद व्रज बहो मेर के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी, व्रज पूरन पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोंधी कीनी वेद धुनी, सुनी धाई सवे व्रज नारी सहज सिंगार किए, तन पहरे नौ तन चीर काजर नैन दिए, कसि कंचुकी तिलक लिलाट शोभित हार लिए, कर कंकन कंचन थार मंगल साज लिए, वे अपने अपने मेल निकसी भांति भली, मानो लाल मुलिन की पांति पिंजरन चूर चली, वे गावे मंगल गीत मिली दस पांच अली, मानो भोर भयो रवि देखी फूली कनक गली, और अंचल उड़त न जान्यो सारी सुरंग सुही, मुख माण्यो रोरी रंग सेंदुर मांग छुई, शम श्रवणन तरल तरोना बनी शिथिल गुही, सिर बरखत कुसुम सुदेश मानो मेघ फुई, पिये पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी, लई भीतर भवन बुलाए सब से सुपाए परी, एक वदन उघारी निहारति देत असीस खरी, चिरजियो यशोदा नंद पूरन काम करी। सो या प्रकार सूरदास जी ने नंदालय को वर्णन या पद में करयो और नंद महोत्सव की लीला के दर्शन करे, ऐसे अनेक पदन की रचना सूरदास जी ने करी है। इनमें सुर सागर और सुर सारावली मुख्य रूप से है। परमानंद दास कनौजिया ब्राह्मण हते और कीर्तन बड़े सुंदर गावते। इनके पदन में विरह के दर्शन हुए हैं। श्री कृष्ण के मथुरा गए पाछे ब्रजवासिन की जो दशा भई वाको वर्णन परमानंद दास जी ने इन पदन में करियो। सुपद गोकुल सब गोपाल उपासी, जो गाहक साधन के उधो वे सब बरस ईसपुर काशी, अब छाणत क्यों रति की गासी, अपनी शीतलता तौ न छाणत यद्यपि विदु भयो राहु ग्रासी, किही अपराध जोग लिख पठ्यो प्रेम भजन ते करत उदासी, परमानंद ऐसी बिरहनी मांगे मुक्ति छाड़े गुण राशि। दूसरो पद कौन रसिक इन बातन को नंद नंदन बिन कासो कहिए, सुनरी सखे मेरे दुख यातन को, कहाँ वे जमुना पुलिन मनोहर कहाँ वे खटपट जल जातन को, कहाँ वे सेज को पौड़ी वो फूल बिछोना मृदु पातन को, कहाँ वे दरस परस परमानंद कमल नैन कोमल गातन को। या प्रकार परमानंद दास बाल लीला के उपद गावते, कुंभन दास खेती करते और निष्काम

0: द्वारा आ जाऊ श्री ठाकुर जी के सन्मुख इनको गान हुए है। ऐसे भक्त कवियन को हमारो कोटि कोटि नमन वंदन।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज वार्ता, ब्रज के अष्टछाप कवियन को सामाजिक चित्रण, प्रस्तुत कर रही डॉक्टर अंजना तिवारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये लोकगीत, स्वर स्वामी राम स्वरूप शर्मा का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

श्रोताओ, ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में। कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ कार्यक्रम संध्या वंदन अब यही संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर

आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं दीपक गोस्वामी।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। भैयाओ, खेती में सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी माटी। या माटी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है, और माटी के स्वास्थ्य की रक्षा की बात अगर होए तो या में जो मुख्य बात है कि माटी को हम जीवित रख सकें, वा में जैविक पदार्थ, बाकी नमी, बाकी सूक्ष्म जीव जाते हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी होए और जमीन भी हमारी बंजर नहीं हुए। भैयाओ, मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के काजे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मुख्य उपाय यह है कि हम अपनी खेती में जैविक पदार्थन को प्रयोग बढ़ाएं, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष, हरी खाद या तरीका की अन्य ऐसी हमारी सामग्री जो जैविक होए, या तो हमारी मिट्टी की संरचना सुधरे और केंचुआ और जो बैक्टीरिया हमारे खेती में हैं वे जीवित रह में। ऐसे भैया एक बहुत ही साधारण सी बात है, हमारे पुराने किसान भैया सब जाने ही हैं, और आज की नई पीढ़ी है या बात की भी आवश्यकता है कि हम वैज्ञानिक सोच के संग आपको सोचना प्रारंभ करें। तो भैया यह में महत्वपूर्ण है फसल चक्र, यानी एक फसल जो हमने उगाई ली बाकू बार बार हमें नहीं उगाना है, जैसे गेहूं, दलहन, सरसों। दलहनी फसल नाइट्रोजन लावे है और कीट रोग को चक्र टूटे है। ऐसे ही भैया खाली समय में मूंग, ढेंचा जैसी अन्य फसल उगाई जा सके और नमी को भी हमें सुरक्षित रखो सकते, कटाव कम होएगा और जैविक जो हमारी मात्रा है वो हमारी माटी में बढ़ेगी। भैया बार बार गहरी जुताई से जीव मरे हैं, तो गहरी जुताई आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए और अगर संभव हो तो जीरो टिलेज अपनाना चाहिए। संतुलित उर्वरक, यानी एक जो सोच है कि ज्यादा यूरिया डालेंगे ज्यादा फसल होगी, ये भैया गलत है। उतना ही यूरिया डालना चाहिए जितनी आवश्यकता है, माटी के परीक्षण के आधार पर हमारी फसल में कौन कौन से पदार्थन की आवश्यकता है, जिंक, सल्फर, बोरोन या कौन से ऐसे पदार्थ की आवश्यकता है जो हमें डालनी चाहिए, वही हिसाब से हमें अपने यूरिया को प्रयोग करना चाहिए। और भैया जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोबैक्टर ये सब भी हैं, इनको भी हम प्रयोग कर सकें। मिट्टी पानी की जांच हमें साल में एक बार अवश्य करानी चाहिए और समय समय के अनुरूप जल संरक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कहवे को मतलब यह है, पुरानी कहावत है कि खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में। अगर हमारा पानी संरक्षित है जाएगा तो निश्चित बात है कि हमारी माटी को स्वास्थ्य भी अच्छा होएगा और हमारी जो खेती है वो भी अच्छी होगी। टपक सिंचाई पद्धति को भी हम प्रयोग कर सकें, जैसे हमारा जल को संरक्षण हो, कम पानी में हमारी फसल रह सके। फब्बारा खेती और खेत में हमें सही मात्रा में एक संतुलित योजना बनाए के काम करना चाहिए। ऐसे भैया रासायनिक जो कीटनाशक हैं इनको, यानी जो दवाएं हैं हम डारे चले जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़वे पे ही डारें और जो संस्तुति होए, यानी कितनी मात्रा डालनी चाहिए उतनी ही हमको डालना चाहिए। और अगर जैविक रसायन अगर हम प्रयोग कर सकें तो भैया ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो भैया ये बात तो रही हमारी मृदा के सुधार के संबंध में, मृदा स्वास्थ्य अच्छे बनाए हुए के संबंध में। अब आज हम आपको जानकारी दिवा रहे हैं भेंटवार्ता क्रम में पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो भैया सुनो यह जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज हमने अपनी चौपाल में आमंत्रित किया है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी को, जो कि वेटनरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, और आज हम जिस विषय की जानकारी करेंगे वो है कि दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं तथा इनका क्या निराकरण संभव है। तो डॉक्टर साहब चौपाल में स्वागत है, राम राम
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।
1: तो सबसे पहली बात जो आती है कि

0: दुधारू पशुओं में कौन कौन सी ऐसी प्रजनन संबंधी व्याधियां हैं जो हमारे इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में पाई जाती हैं पशुओं में?
1: जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है प्रजनन संबंधी समस्याओं का, क्योंकि हम जो भी गाय या भैंस का पालन करते हैं वो दुग्ध उत्पादन के लिए ही पालन करते हैं, और प्रजनन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी तो जो हमारा उद्देश्य है, हम जिसको कहते हैं कि प्रतिवर्ष एक बछड़ा या एक पड़वा या पड़िया प्राप्त करना, वो हमारा पूर्ण नहीं हो पाता और पशु हमारा दूध देने के स्थिति में
0: जी
1: नहीं रह जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: अगर पशु एक साल में एक बार भी आएगा नहीं तो फिर उससे दूध उत्पादन लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी मोटी व्याधियां हैं?
1: देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या हम अपने किसान भाइयों से संपर्क में आते हैं तो सुनते हैं कि कई बार जिस बछड़े या बछिया को वो पालन करते हैं, पालते हैं, वह बड़ी देर से हीट में आता है या अधिक आयु में हीट में आता है। वो कहते हैं कि 3 वर्ष या 4 वर्ष की आयु का हो गया है, उसके बाद भी वो हीट में नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पशुपालक भाई जब तक पशु दूध दे नहीं रहा होता है, उसके खान पान या उसके पोषण के संबंध में ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, जागरूक रहते हैं तो भी ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि पशु से हमें कोई उत्पादन नहीं मिल रहा है तो उसको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, परंतु इस लापरवाही की वजह से पशु की दूध देने की आयु कई बार बढ़ती चली जाती है। प्रायः ऐसे पशु भी देखने में आते हैं जो 4 वर्ष या 4.5 वर्ष की आयु के हो गए होते हैं, उसके बाद भी ऋतुकाल में या मद में आना शुरू नहीं करते हैं। तो पशुपालक भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि यदि जो पशु अभी कम उम्र का है या बच्चा है, उसके खान पान का भी समुचित ध्यान दें। खनिज लवण का मिक्सचर यदि आप दुधारू पशुओं को दे रहे हैं अपने यहाँ के, तो उसके साथ ही साथ बछड़े या बछिया को भी वो चीज, साथ में कृमिनाशक औषधियां और ऊर्जा का भरपूर खल है, बिनौला है, जैसे देते हैं आप दुधारू पशुओं को उसी प्रकार से छोटे पशुओं का भी ध्यान रखें ताकि वो सही आयु से ही हीट में आना शुरू
0: तो
1: कर दें।
0: एक जो बड़ी समस्या है जो लगभग लगभग हर पशुपालक को के सामने आती है, वही है कि सही उम्र पे पशु जो है वो प्रजनन क्षमता प्राप्त नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि पशु गर्मी में आता है लेकिन उसका जो जो भी उसके लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं हो पाते
1: जी,
0: और सही समय पे हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो उनको भी उसका अंदाजा नहीं हो पाता और पशु गर्मी में ना आने के कारण सही समय पे उसको हरी नहीं करवा पाता
1: जी, जी।
0: तो ऐसी समस्या के लिए क्या निदान?
1: देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि पशु के ऋतु काल या मध्य काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना
0: जी।
1: तो हम प्राय कहते हैं कि पशु हमारे गाय या भैंस जो भी हो, 18 से 24 दिन के अंतराल पर यदि एक बार हीट में आना शुरू कर दिया है पशु ने ऋतु काल में, तो वह हर 18 से 24 दिन के बाद मध का प्रदर्शन करेगा। तो पहली चीज तो हमारे किसान भाई इसी चीज को लेकर जागरूक करें रहें या उसकी तारीख को नोट करके रखें कि पशु जब हीट में आया और उसके 18-20 दिन बाद उनको इस चीज की अपेक्षा या इस चीज के बारे में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी भी दिन पशु हीट में आ सकता है, क्योंकि हम थोड़ा ध्यान से यदि उसके लक्षणों को देखेंगे तब कई बार पता चल पाता है कि पशु हीट में है। खासतौर से उन महिष वंशीय पशुओं के बारे में बात करें
0: जी,
1: भैंसों की बात करते हैं अगर, और वो भी विशेष रूप से जब गर्मी का दिन है, यानी कि अप्रैल मई से शुरू होकर अगस्त सितंबर तक का जब गर्मी ज्यादा होती है, तो हमारी ये भैंसें जो है या महिष वंशीय पशु यह हीट या मद का लक्षण उचित ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं। तो यदि उस पर ध्यान न रखा जाए कि पशु हीट में आ रहा होगा या मद में आ रहा होगा, तो कई बार यह पता ही नहीं चल पाता कि पशु मध्य काल में आया और वह समय निकल जाता है जिससे कि पशुपालक सही समय से गर्भाधान करवा नहीं पाता, और सही समय से गर्भाधान यदि आपने नहीं करवाया तो पशु के गर्भित होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी।
0: अच्छा, वो लक्षण क्या होंगे डॉक्टर साहब?
1: देखिए, लक्षण जो कहे जाते हैं, पहली चीज पशु थोड़ा बेचैन हो जाता है, दूसरी चीज जो ये कही जाती है कि पशु के जननांगों से पारदर्शी रंग का गाढ़ा लिसलिसा स्राव
0: जी
1: आना, कई बार वो सीधे स्राव नहीं दिखाई देता परंतु फिर भी शरीर के पीछे के अंगों पर, पूंछ में, पूंछ के बालों में कई बार वो सूखा
0: दिखाई
1: स्राव आप ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा। पशु का दूध जिस दिन हीट में आता है पशु मद में, उस दिन अचानक कम हो जाता है। अगर पशु किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं है, उस समय उसका ऋतु में आने का हो रहा है और दूध अचानक से एक वक्त का कम हो जाए, पशु थोड़ा बेचैन हो जाए, स्राव दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा अधिक गर्मी होती है अप्रैल मई में, तो ये जननांगों से स्राव हो सकता है आपको दिखाई न दे। पशु कई बार आप जिस खूंटे पे बांध रहे हैं वहां बार बार उठना बैठना, चक्कर लगाना या बोलना तेज तेज, जो भी लोग पशु के साथ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि यदि वो थोड़ा सा भी ध्यान दें तो वो इन लक्षणों को छूट जाएगा उनसे
0: जी
1: रहेगा।
0: ये लक्षण जो है पशु के, ये क्या दिन के समय में भी कोई परिवर्तन है? रात में ज्यादा होते हैं, दिन में ज्यादा?
1: देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि रात के समय पशु हीट के लक्षण मद के

0: लक्षण ज्यादा प्रदर्शित कहा जाता है
1: जी
0: करता है, या पशु को जब आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं कहा जाए एक तरह से, तब वह इन लक्षणों को ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित करता है। दूसरा, गर्मी भी रात के समय में कम होती है। दूसरी चीज, हमें इसमें एक तो चक्र का ध्यान देने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि पशु का गर्भाधान कब कराया जाए यदि पशु मद में है
1: जी,
0: ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें ये कहा जाता है कि जब पशु मद में आना शुरू हो, अगर आपने पहले देखा जैसे ही पशु मद में आना शुरू हो, तो तुरंत ही उसका गर्भाधान नहीं करवाना चाहिए पशु में, गाय और भैंस की बात हम कर रहे हैं
1: जी।
0: मद में आए उसको 10 घंटे 6 घंटे बीत चुके हों तब जाकर उसका गर्भाधान, यानी कि मद काल समाप्त होने से थोड़ा पहले
1: जी।
0: तो एक बड़ा साधारण सा नियम कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसको एएम पीएम या सुबह या शाम कह सकते हैं। यदि आपने शाम को पहली बार देखा कि पशु मद में है, तो उसको उसको अगली तत्काल सुबह
1: जी
0: गर्भाधान करवाएं, और यदि आपने सुबह में देखा कि पशु मद में है, तो उसको शाम के समय गर्भाधान करवाएं, जिससे उसके गर्भित होने की संभावना अधिक रहेगी।
1: तो ये तो हमने बात की कि पशु गर्मी में नहीं आता है या प्रजनन की सही उम्र क्या है। इसके अलावा भी दूसरी प्रजनन संबंधी समस्याएं जो पशु में होती हैं कि एक बार पशु गर्मी में आया, गर्भाधान किया, पशु ब्याह भी किया, उसके बाद ब्याने के बाद फिर पशु लक्षण शो नहीं करता है।
0: जी जी, इसको अंग्रेजी में हम एनिस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं कि यानी कि जो पशु एक बार गर्भित रह चुका है, बच्चा दे चुका है, और उसके बाद वह मद में आना उसका नहीं हो पा रहा है या काफी देर से हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसका दो ब्यात के बीच का अंतराल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पोषण इसमें भी आ जाता है, क्योंकि कई बार जब पशु ब्याने के बाद दूध देना शुरू करता है, तब उसके बहुत ज्यादा खनिज लवण का ह्रास दूध में होता है, और हम यदि उसकी पूर्ति भोजन के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर से ये संकर नस्ल की गायों में ये समस्या बहुत ज्यादा देखने में आती है, जो हम होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी के क्रॉस पशु पालते हैं, क्योंकि उनका चयन ही इसी आधार पर किया गया है कि वो अधिक से अधिक दूध दें। तो ब्याने के बाद पशु जब अधिक से अधिक दूध देना शुरू करता है, तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, तमाम खनिज लवण, वसा सब दूध में निकलता है साथ में, और उसकी प्रतिपूर्ति यदि भोजन के द्वारा उतनी या उससे अधिक नहीं हो पाएगी, तो यह इसका विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव उसकी उर्वरता पे पड़ता है। तो यह उन पशुओं के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये चीज, एनिस्टस वाला जो समस्या, जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, जो ज्यादा दूध देने वाले हमारे पशु हैं। तो यदि ज्यादा दूध देने वाला पशु है, तो उसका खान पान भोजन उसी हिसाब से बनाकर अधिक मात्रा में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो देर से मद में आएगा या हो सकता है ना ही आए। दूसरी इसमें चीज है कि प्रसव के दौरान यदि कोई समस्या हो गई, यदि बच्चा फंस गया, जेरी रुक गई, या बच्चेदानी का संक्रमण गर्भाशय शोथ या मेट्राइटिस कहते हैं, अगर ऐसी कोई भी समस्या हो गई, तब पशु जल्दी मद में आपका नहीं आएगा। ऐसी अवस्था में पशु की यदि जेर रुकी हो या जननांगों से किसी प्रकार का गंदला या मैला स्राव आपको दिखाई देता है, पशु में मध्यम या तेज स्थिति का बुखार लगातार बना रहता है, पेट में दर्द पशु के बना रहता है, पशु चारा कम कर देता है, तो आप तत्काल किसी पशु चिकित्सक से संक्रमण करें, बच्चेदानी के संक्रमण आदि का इलाज करवाएं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने में आती है कि पशु ऋतु में तो आता है लेकिन गर्भाधान भी करवाते हैं, लेकिन जो गर्भधारण है वो नहीं हो पाता, या जिसे हम कहते हैं कि पलट जाता है,
0: पलट जाना या फिर जाने वाले पशु कहते हैं,
1: फिरावट
0: जिस चीज को कहते हैं। एक तो जो चर्चा हमने की पशु मद में आए ही ना, उसकी चर्चा की। अब यह है कि पशु ऋतु काल में तो समय समय से आ रहा है
1: जी,
0: या कई बार इसमें ऐसे भी पशु होते हैं जो ठीक 18 से 24 दिन के बजाय कभी 35 दिन पे, कभी 40 दिन पे, कभी 38 दिन पे, अलग अलग समय के अंतराल पर मद में आते हैं, और वो गर्भाधान जब किया जाता है उस मद काल में, तो पलट जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो पलट जाने की जो सबसे बड़ी कारण है, फिर जो भी चर्चा हम कर रहे थे, कि निम्न स्तर का बच्चेदानी का संक्रमण बना रहना
1: जी,
0: यह सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण यह इसलिए हो जाता है क्योंकि यह निम्न स्तर का संक्रमण होता है, तो कई बार जिस स्राव की हम बात कर रहे थे पहले, गंदला स्राव आना या बुखार बना रहना पशु में, ऐसा कोई लक्षण पशु में नहीं आता है। पशु अच्छा खाना पीना उठाता है, पानी पीता है, समय से मध्यकाल में भी आता है, किसी प्रकार का दिखाई देने वाला स्राव भी कई बार नहीं आता है, परंतु हल्के स्तर का संक्रमण बच्चेदानी में बना रहता है। तो कई पशु ऐसे हैं जिनमें कुछ हार्मोनल दवाएं देने से या एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से वो जो हल्के स्तर का संक्रमण है बच्चेदानी का, जिसको हम एंडोमेट्रिक

0: एटिस कहते हैं
1: जी,
0: वह दूर हो जाता है। वह दूर होने के बाद से पशु का ये पलटने वाली समस्या दूर हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी एक समस्या कई बार देखने में आती है कि पशु के अंडाशय में, ओवरी में, जिसको हम कहते हैं रसौली का हो जाना। रसौली भी इसमें दो तरह की होती है, जिनको हम एक तरह, तो एक नाम दिया गया है फोलिकुलर सिस्ट, दूसरा कहते हैं ल्यूटियल सिस्ट। दो तरह की होती हैं, बात करने के लिए बता दिया गया। और फोलिकुलर सिस्ट जब होता है तो पशु जो हीट के लक्षण प्रकट करता है वो अत्यधिक करता है, कई बार
1: जी
0: बहुत ज्यादा कामुकता भरा व्यवहार पशु प्रदर्शित करेगा, और उसका जो ये हीट में आने का समय है इसका कुछ निश्चित नहीं रहता। कई बार ये जल्दी जल्दी भी हो सकता है, 18 से 24 दिन के बजाय 10 दिन में लक्षण प्रकट करना शुरू कर दे, या लक्षण जब प्रकट करे तो कई बार एक बार में 3 दिन 4 दिन तक मद में वो रह जाए, या बिल्कुल ही वो किसी प्रकार का उसमें मद का लक्षण प्रकट नहीं होता है। तो इन दोनों के लिए आपको पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, उसमें अंडाशय का हो सकता है अल्ट्रासाउंड आपको करवाना पड़े और उचित दवाएं लेनी पड़े। पलट जाने की तो यह मुख्य समस्याएं पशु से संबंधित हैं, मादा पशु की बात हम कर रहे हैं। दूसरी जो एक बड़ी साधारण सी समस्या है जिस पे ध्यान कम दिया जाता है, वह यह है कि जो हमारा नर पशु है, यदि हम प्राकृतिक गर्भाधान की बात कर रहे हैं, नंदी या सांड का प्रयोग करते हैं पशु को निषेचित करवाने के लिए, या कृत्रिम गर्भाधान का भी प्रयोग करवाते हैं, यदि जिस वीर को या आम हमारे किसान भाई सीमेन शब्द जानते हैं उसका प्रयोग जो कर रहे हैं उसमें कोई कमी है, या उस गर्भाधान की प्रक्रिया में
1: जी
0: कोई गड़बड़ है, यानी कि वीर ठीक ना हो,
1: या समय से,
0: या जो पहले हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले कि आप सही पशु मद में आया 36 घंटे पहले और आप मद समाप्त होने के 2 दिन 1 दिन बाद गर्भाधान करवा रहे हैं, या बिल्कुल मदकाल शुरू हुआ उसी समय आपने गर्भाधान करवा लिया, या जिस व्यक्ति से आप कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं वह सही प्रकार से नहीं कर पा रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा कारण है पशु के गर्भित ना होने और पलट जाने का
1: जी। इसके अलावा भी जैसे अभी हमने जो बात की वो थी पशु का गर्मी में आना लेकिन गर्भाधान न होना, या सही समय पर गर्मी में आना। कई बार ऐसा होता है कि ब्याते समय भी कई सारी व्याधियां पशुओं में देखने में मिलती हैं, जैसे बच्चा फंस जाए या कोई चोट लग जाए, या फिर कभी कभी जो आम समस्या है कि जेरी का फंस जाना
0: जी, जी।
1: तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि इसमें कैसी व्याधियां या
0: किस तरह का नुकसान हो सकता है। कई बार किसान भाई समस्या लेके आते हैं जिसमें योनि का कुछ हिस्सा ब्याने से पहले शरीर के बाहर निकल आता है, जिसको आम भाषा में हम लोग फूल या बेली निकलना कहते हैं। यह समस्या शरीर में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन कहते हैं, तो ईस्ट्रोजन की अधिकता के कारण प्रायः यह समस्या होती है। अगर शरीर के अंदर ही ईस्ट्रोजन की अधिकता है तो उसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु कई बार कुछ ऐसे चारे या ऐसी दवाएं भी हैं जिनमें ईस्ट्रोजेनिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे कि बड़ा साधारण सा चारा हमारा रबी के फसल में होता है बरसीम, जिसको हम कहते हैं
1: जी।
0: बरसीम में ईस्ट्रोजेनिक तत्व भारी मात्रा में होते हैं, तो कुछ पशु जिनमें नैसर्गिक रूप से यह बेली निकलने वाली समस्या बार बार होती है और उनको जाड़े के दिनों में ज्यादा बरसीम अगर खिला दी जाए
1: जी,
0: या बरसीम पे ही उनको पाला जाए, तो इस जो तत्व होता है इसको हम कहते हैं फाइटोईस्ट्रोजन, यानी कि पादप पदार्थों में पाया जाने वाला ईस्ट्रोजेनिक तत्व, उसकी अधिकता से यह बेली वाली समस्याएं होती हैं। तो जिन पशुओं में नैसर्गिक रूप से समस्या होती है, कई बार देखा जाता है कि हर ब्यात में यह समस्या बार बार उनको होती रहती है, तो जो ऐसे पशु हैं उनको बहुत ज्यादा बरसीम इत्यादि या ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन बाहर से आप किसी कारण के लिए भी जल्दी न लगवाएं, और कैल्शियम की कमी होने से भी यह समस्या कई बार होती है। तो आमतौर पर ब्याने के 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा होता है यह समस्या होती है, तो उस समय आप कैल्शियम उसके भोजन में शामिल करें, और बरसीम यदि ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, आमतौर पर रबी में ही उपलब्ध हो पाती है, तो उसको थोड़ा सा कम कर दें
1: जी।
0: दूसरी चीज प्रसव संबंधी समस्या में जो बच्चे फंसने वाली समस्या है, हालांकि इसमें कोई बचाव का बहुत काम नहीं किया जा सकता, पर फिर भी एक विषय का ध्यान देना है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान का ही प्रयोग ज्यादातर हमारे किसान भाई आजकल करते हैं, और जो वीर प्रयोग में लाया जाता है वह अच्छी नस्ल के बड़े जो सांड होते हैं उनका लाया जाता है, तो कई बार यह देखने में आया जाता है कि जो हमारी देशी गाय है, जो छोटी है 2 क्विंटल की, 2.25 क्विंटल की, 2.25 क्विंटल तक का पशु है, उसमें आप बहुत अच्छी प्रजाति के नस्ल के सांड का वीर का प्रयोग आपने कर लिया, तो जो बच्चा बनेगा पेट में वह उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण होंगे, तो वह बच्चे का आकार कई बार माँ के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि गाय आपकी छोटे आकार की है, देसी नस्ल की गाय है, तो यदि आप कृत्रिम गर्भाधान करवा भी रहे हैं, तो अगर आप उससे जो हमारे देश की ही अच्छी दुधारू गायें हैं, आप साहिवाल हो गई, आप सिंधी हो गई, हरियाणा हो गई, इसके वीर का प्रयोग करेंगे कृत्रिम गर्भाधान।

0: समाधान के हेतु, तो यह बच्चे फंसने वाली संभावना काफी कम रहेगी। दूसरी जेरी फंसने की जो समस्या है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि किसान भाई इसकी वजह से कई बार बच्चेदानी का संक्रमण बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है उसकी। और जेरी जब फंसती है तो किसान भाई को हमारे बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए, और किसी को भी बुलाकर तुरंत खींच तान के उसको निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उससे दो समस्याएं होती हैं। पहली, आप बहुत जल्दी उस जेरी को खींचने का प्रयास करेंगे तो अंदर गर्भाशय में रक्तस्राव होने की संभावना और चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे पशु की जान भी जा सकती है, और दूसरा आने वाली समय में पशु बांझ भी हो सकता है। और कोई बाहर से आप हाथ डालेंगे, कोई उपकरण डालेंगे, तो संक्रमण की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा घबराएं मत, उसके योनि के पास से, गुदा के पास से अगर आपको गंदगी लग रही है उस जेरी की वजह से, तो उसको काट के हटा दें। 2 दिन 3 दिन 5 दिन में धीरे धीरे वो जेरी अपने आप बच्चेदानी से अलग हो जाती है, उसके बाद उसको धीरे से खींच के हटा दें, या कई बार वो अपने आप ही हट जाती है। इस साथ में ये चीज भी कहना चाहूंगा कि जब तक जेरी पशु के फंसी हुई है तब तक बच्चे को दूध ना पिलाने का कोई कारण नहीं है विज्ञान में। इसलिए जेरी फंसी हो चाहे न फंसी हो, या पशु को कोई भी समस्या हो, उसको 24 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध अवश्य ही पिलाएं, और बच्चे का जितना शरीर का भार है उसके 1/10 भाग के बराबर पहला दूध बच्चे के शरीर में चला जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे की भी जान को खतरा हो जाता है और आने वाले समय में उसका जीवन कष्ट में रहता है।
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब देखिए, आज हमने जो बात की कि पशुओं की प्रजनन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिसको कि हमारे इस क्षेत्र के पशुपालक भाई उससे त्रस्त हैं या पीड़ित हैं, और उनके उपचार के बारे में जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी हमारे भैया जानकारी ले रहे पशु में प्रजनन संबंधी समस्याओं के संबंध में, और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, इनसे बातचीत कर रहे विजय सिंह नौलखा। भैया, पशु हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण एक सहयोगी है, और हमारी रोजगार को भी साधन, तो या को स्वास्थ्य और वाकई देखभाल, बस थोड़ी सी जानकारी वैज्ञानिक होए, और जो समाज में चलन के साहब ऐसे करवे पे ऐसी ये जानकारी को कम प्रयोग हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ वैधानिक जानकारी जो हमारे विशेषज्ञ की हो वही, तो जब हमारे पशु समय से अगर प्रजनित होंगे तो निश्चित सी बात है हमारे घर में दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो हमारे किसान भैया ऐसी बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम आपको सुनवा में हैं, यह है ब्रज लोकगीत।

अभी हमारे भैया आनंद ले रहे शालिनी शर्मा के स्वर में या ब्रज लोकगीत को। भैया अगले दिनन में आसमान में हल्के से मध्यम घने बादल छाए रहे की संभावना है और मध्यम बारिश हैवे की भी संभावना है। तो किसान भैया को ये सलाह दी जावे है कि बुबाई एवं अन्य का शिकार वर्षा ना हैवे पे और आसमान साफ हैवे पे करें और अत्यधिक वर्षा जल निकास को उचित प्रबंध करें। धान के खेतन को मेढ़न से मजबूत बनाएं जैसे बरसात को पानी खेत में रोको रह सके। संगर सिंह पशुन को बरसात के रुके हुए पानी को न पीने दें और पशुन को सूखे व सुरक्षित स्थान पर रखें। भैया यही के संग आज के कार्यक्रम में विदा लेवे को है समय। सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दीपक गोस्वामी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदेश भर में नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया 125 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का लखनऊ से शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदेश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहां अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई। धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप 1 सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा। उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, कौशाम्बी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। कोटेदारों में लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए सरकार की खेल संस्कृति को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपये का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
2: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान
0: DBT
2: के माध्यम से देगी।
0: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय से भी कहा है कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर

0: सुनवाई कर रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया गया है। वहीं 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और 8 राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉ भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। सहारनपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। नागपंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पुष्प वर्षा से कांवड़ियों के चेहरे खिल उठे और वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। मार्कंडेय महादेव और महामृत्युंजय मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। नागपंचमी पर प्राचीन नागकुआं मंदिर कारकोटक वापी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने नाग देवता और नागेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन किया। नाग कुंड में दूध जल और लावा अर्पित करने की परंपरा निभाई गयी। सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं लखनऊ, गोरखपुर, पीलीभीत, आगरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और जौनपुर में भी प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
2: कल भी भारी वर्षा का जो सदर्न पोर्शन है और तराई बेल्ट है, वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि लो प्रेशर धीरे धीरे मूव होकर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 20-21 को फिर से जो उत्तर प्रदेश के साउथ वाले हिस्से हैं, बुंदेलखंड, विंध्या रीजन, से बहुत भारी वर्षा आने की संभावना हो सकती है। तापमान में जैसा कि 3-4 डिग्री की गिरावट हुई है, यही क्रम में कल भी रहेगा। बाकी परसों से हल्का हल्का खुलेगा, हालांकि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला बनेगा।
0: प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में नई ई पॉस आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को बढ़ाकर किया गया ₹125 प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। युवा शक्ति को सही राह दिखाने के लिए खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए जाने पर दिया बल। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की गई घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारियों को मिली

0: बड़ी जिम्मेदारी। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और चित्रकूट में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी।

दोस्तों, हर दिन एक नई शुरुआत है। मुस्कुराइए और जीवन को पूरे उत्साह से जिए। और उसी उत्साह के साथ शुभारंभ करते हैं इस कार्यक्रम शाम सुहानी का। कार्यक्रम में हमें प्राप्त हो चुके हैं आपके ढेरों संदेश। उस क्रम में ये पहला संदेश जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। कलानोट से जुड़े नरिंदर किरण, नितिन और मयंक शर्मा। नेहरू चौक पैटर से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। अगले संदेश के साथ अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोंडे, योगिता प्रियाली पार्थ और इनके परिवार के सभी सदस्य। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। अगले संदेश के साथ छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। संदेश प्राप्त हुआ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अगले संदेश के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं बलकरण, अंजनी, रजमत, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम और सद्दाम। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबिये। सदर बाजार कुरावली से जुड़े अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत और सोनम वर्मा। अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश अधिरा। संदेश प्राप्त हुआ चितलवाड़ी अकोला से। दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से आप सभी श्रोता प्रतीक रोशनी प्रांजल रॉय। बाबा पट्टी वलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी रॉय। कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले। पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनबने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन और पीहू स्वर्णकार। भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, आर्यन और कार्तिक वर्मा। मामूलवाड़ी महारा से सुपान ताइडे, मोहन करांगले। जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और पीएस नहावकर। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुगू और भाविक सिक्का। सुनते हैं आप।

सभी की पसंद पर ये गीत। गीत को स्वर दिया है जावेद अली ने, फिल्म का नाम राज 3। गीत और संगीत राशिद खान का।

जहाँ श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा प्रेम कपिल सिवांश संगीता लिपि और दीपाली गोप, रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी, झालावाड़ राजस्थान से ही मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुनदीबाई बागरी। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं

गंडडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी, शुभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराज से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा, शशांक। एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां का आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडे, बिट्टू और ममता। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोकेलाल वर्मा, मेहर नगर उमरखेड़ मारा से अभिजीत गवानकर, सरिता प्रणिता सिद्धांत और टुकटुक गवानकर, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, अदार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा जुड़ चुके हैं, राजकोट से जैमिन जैन, हेतल कृष्णा और राकेश जैन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल, नारायण सोपान, वसंतरा भोजने और आशीष मुरहेकर, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, पटियाली रोड गंडडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुशरत एजाद और अरीबा, अमरावती से सैयद भाई सूफियान, सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार, नसीम आयशा और इनके समस्त मित्रगण, नागपुर से विठल अनसुईया, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश, संध्या और स्वराज विराज, बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनिया करमकर, जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी। एक और संदेश हमें मिला है, करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल माहेश्वरी, प्रवालिका विष्णुवर्धन, विघ्नेश का, गमहरिया जमशेदपुर से आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं, रोहन आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल, चंदौली से ही सुंदर और सुमन जायसवाल। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता तुषार, रिंकी शेखावत, मोताला मारा से राजगवई, राजवीर गवई का संदेश हमें मिला है, रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघराशि, माधुरी किरण और अनुराग मोहन, संदेश भेजा है किशनगंज बिहार से, पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी गगनदीप, आरजू और गुड्डू जाजौरिया, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सुरेखा, शुभम अक्षय सेन। एक और संदेश छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा, रेहान और फैजान का, बत्ता परिवार जुड़ चुका है हमसे कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप सभी, मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, बुलडाणा मारा से संतोष एस काले, तेजस और लोकेश एस काले, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाडे, भारती जानवी वैष्णवी और इनके समस्त परिवारीजन, शेख चांद, शेख अदनान, महादेव परदेसी, शेख नुमान और जाकियाबाजी पैठण से आप सभी की ये फरमाइश हमें मिली है, साहबगंज चौराहा यूपी से सूरज चौरसिया और सरोज चौरसिया, सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा मधुबनी बिहार से नवीन ज्योति रानी मेनका, श्वेता स्वाति और गोदावरी ने। नाज मंजिल मैसोल सीतामणि से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम रूबीना, आरिज नदीम, शमीम ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा ने। इस गीत को स्वर दिए थे सोनू निगम, जसबिंदर नरूला और साथियों ने। फिल्म का नाम जानशीन, गीत रचना टिमोन सिंह की, संगीत विधु का। कार्यक्रम में अगला संदेश मिला है शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन। वीना

मस्कीन आशीष राजा, मेगा मस्कीन का पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल रचिता, केशु और रिदान खुराना। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव, गरिमा शर्मा, सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गाजीपुर से आप सभी जुड़े हैं। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। महेंद्र प्रताप और इनके समस्त परिवारीजन। तिवर्ता छत्तीसगढ़ से संदेश प्राप्त हुआ है। मजनू का टिल्ला से कमल, मधु, सागर, बालूजा। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। मगल रोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका, गजेंद्र, हेयान चंदन। हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। प्रमोद कुमार साहू, वीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। संदेश हमें प्राप्त हुआ है बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से। गांधीनगर गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल, निशा, संतोष, नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, भारती, पूर्वी, रूही, अनन्या, भक्ति, शक्ति। संदेश भेजा है ललितपुर उत्तर प्रदेश से। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव, जानवी, गुरु और नीरेंद्र राजपूत। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। बठिंडा रोड मंडी डबोवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, लकी, तान्या, नारंग का संदेश प्राप्त हुआ है। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि झंगेल। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जुड़ चुके हैं। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु, संस्कृति और पौरुष। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित आहूजा। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता आरजू, हसमुखलाल, बुलबुल शक्ति, संजीव जिंदल। संदेश मिला है समाना शहर पंजाब से। अगली फरमाइश के साथ आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। कोशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र भाई, फूलो रानी, विजया, श्वेता, चुलबुल आप सभी। मधुबनी एक्सटेंशन से आपका ये संदेश हमें मिला है। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, योगेश, लक्ष्मी, संध्या और डीकेश साहू। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा। भवन प्रकाश, गौतम, कलीम जख्मी, डॉक्टर दबीरुल और शबनम अनवर, इन्हीं के साथ सरिता गौतम। रेलवे रोड गंजुडवारा से मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन, रोहित, पीयूष कुमार, आयशा सोनवने, करिश्मा, अविका, साहिसा सोनवने, कोयते वस्ती, पुनावले से। तरन तारण पंजाब से गुरुदर्शन, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरु शबद। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। नांदेड़ से जुड़े प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन। विजय महोबिया, कविता, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। संदेश भेजा है रामगंज खंडवा से। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा। पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विकी, नानू, रविंद्र रौनक सेन। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से

शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू और जलेश्वर नायक, इन्हीं के साथ गौरव। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। झारखंड बाम्बो सुपाई साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश और प्रकाश। वीरम गांव से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश और सनी भावसार। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता राधा, दिव्यांशु, संजय ढींगिया, अनिल और संदीप मक्कड़। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना प्रिया सरैया और दिव्या कुमार की आवाजों में फिल्म एबीसीडी 2 से, और इसी गीत इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं मिला है उसके लिए मुस्कुराना मत भूलिए। इसी सुविचार के साथ मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब सारा रखिए ध्यान। दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए लेते हैं आनंद फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म का नाम हम साथ साथ हैं। गीत रचना आर किरण की, संगीत राम लक्ष्मण का।

कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं ये गीत कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म अजनबी से, गीत समीर का, संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे ये गीत चिन्मयी कीर्ति और मरियम टलर की आवाज में, फिल्म गुरु से। गीत रचना गुलजार की, संगीत एआर रहमान का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर, कार्यक्रम एक ही फिल्म से कुछ ही पलों में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो दोस्तों जरा याद कीजिए 90 के दशक का वो दौर जब फिल्मों में कॉमेडी, प्यार और पारिवारिक रिश्तों का एक खूबसूरत मेल हुआ करता था। ऐसी ही एक बेहद मनोरंजक फिल्म थी राजा बाबू, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कहानी शुरू होती है राजा बाबू से, एक ऐसा नौजवान जो पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन दिल का बेहद साफ, मासूम और मस्त मौला, साथ ही साथ अपने माता पिता का लाडला था। उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला और राजा अपनी सरल जिंदगी में बेहद खुश है।

और इसी सरल जीवन के बीच शुरू होती है कहानी, जिसमें एंट्री होती है मधुबाला नाम की एक लड़की की, एक पढ़ी लिखी खूबसूरत और आधुनिक सोच वाली लड़की। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ती हैं और प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मधुबाला को पता चलता है कि राजा बाबू अनपढ़ है। उसकी सोच बदल जाती है और वह राजा से दूरी बनाने लगती है।

जी हाँ दोस्तों, जब मधुबाला को पता चलता है कि राजा बाबू अनपढ़ है तो वो उससे दूरी बनाने लगती है। लेकिन राजा बाबू के लिए यह बात बहुत ही दुखदाई होती है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन यही झटका उसके अंदर के इंसान को बदलने में कारगर सिद्ध होता है और खुद को बदलने का जज्बा पैदा करता है। वे पढ़ाई करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करता है। इसी दौरान कहानी में कई मज़ेदार घटनाएं, गलतफहमियां और पारिवारिक उतार चढ़ाव आते हैं जो फिल्म को और भी मनोरंजक बना देते हैं। और अभी जो गीत अभी आपने सुना था, आवाज अभिजीत की थी। अब जो गीत आप सुन रहे हैं, इसमें स्वर उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के।

या दोस्तों, फिल्म राजा बाबू सिर्फ हंसी ठिठोली और मनोरंजन की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसान की असली पहचान का खूबसूरत आईना भी है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि किसी इंसान की कीमत उसकी कमियों से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई और अपने रिश्तों के प्रति सच्चाई से तय होती है। और आइए अब चलते चलते सुन लेते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग, आवाजें विनोद राठौर, आनंद और जॉली मुखर्जी की। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा समीर ने, संगीत तैयार किया आनंद मिलिंद ने।

तो दोस्तों, राजा बाबू की इस कहानी से आज की हमारी मुलाकात को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते बस यही कहूंगी, जिंदगी में हंसी हो, रिश्तों में अपनापन हो और दिल में सच्चाई हो तो साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। इसी खूबसूरत एहसास और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर से मिलेंगे किसी और कहानी और फिल्म के गीतों के साथ। तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने फिल्म राजा बाबू के कुछ गीत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल

0: टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने

0: विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट। घर घर।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: Yeah. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.newzone.in और हमारे newzone.air ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केंदुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms, directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of

और आइए अब सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा ये गीत शाहिद मालिया की आवाज में, फिल्म मौसम से, संगीत प्रीतम का।

0: कार्यक्रम के अंत में आपने सुना ये गीत केके की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से। गीत और संगीत आर्को का था और इसी के साथ सुहाने तरानों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग।

0: एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-2371-2371-7116 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भलीभांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को श्रोताओं को बताना चाहूँगा, जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपने ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता ऐसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए। कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज?
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग, यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी मतलब इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
2: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर। उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे FBO क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्वलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है FBO को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे हैं वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारा उसका पेनालिटी प्रोविजन।

0: ऑप्शन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में. हमारा एक पोर्टल है फोर्सकॉस्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं. हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी नमस्कार
1: जी, बताएं क्या सवाल है आपका.
2: हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेविल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित

0: दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है?
1: जी कविता मैम बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका?
2: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके, उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है. अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए. उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं. से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं. अगर सोडियम का बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम ये डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा, वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
1: जी बिल्कुल. और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है? पिछले एक साल में CCPA ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं?
3: CCPA की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले 5 वर्षों में इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
1: बहुत बड़ी कार्रवाई.
3: और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है, उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहाँ कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब UPSC का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे.
3: इनफैक्ट यदि आप सारे जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर लें तो UPSC के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी. तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं. दूसरा जो बड़ी कार्यवाही CCPA ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर. डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है, तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है. तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जेप्टो है, इंडिगो है, बुकमाइशो, स्पाइसजेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है. एक जो और बड़ी कार्यवाही CCPA ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है. तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो CCPA ने पिछले वर्षों की है.
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल. अमित जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
4: जी नमस्कार. मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है. इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है. इसको कैसा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था, इस पर थोड़ा सा आप इस पर बता दें.
1: जी कविता मैम आपसे सवाल है ये.
2: जी बताइए प्लीज इसको.
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है ये कहना चाह रहे हैं.
2: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है?
1: जी जी जी जी, FSSAI का.
2: हाँ जी, देखिए हमारे पास

0: दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एफबीओ उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं उसमें एफबीओ को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं. अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं. अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे. इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है. सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है. फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं. हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का. उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए. इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है. मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है. ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है. आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल.
1: जी बिल्कुल. तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी. अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है. ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है. तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
2: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी.
2: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं. अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
2: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है. और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं. इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4,000 से ज़्यादा NRIs हैं. अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं. और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं.
1: ये बहुत बड़ी पहल है. और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े. श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
3: हेलो, नमस्कार
1: जी. श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, सवाल
3: जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी.
3: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है
1: जी,
3: तो ऊपर से तो लेबल से

0: रहता है, तो इसके इसके समाधान का क्या मतलब, तरीका क्या है मतलब?
1: कविता मैम आपसे सवाल है ये।
2: हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है
1: जी
2: और
1: बिल्कुल,
2: ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही वही उनका सवाल है ना?
1: जी
2: हाँ
1: बिल्कुल।
2: जी, मतलब ये नहीं, प्रोडक्ट मतलब शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ्स, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है. वो सेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते. हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस. ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम लेबल नहीं देखते जनरली, अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके. इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक प्रीपैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है.
1: जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
3: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी जी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं, कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना.
1: जी
3: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915 1915 है, ये टोल फ्री है.
1: जी
3: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं. यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है.
1: जी
3: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है. व्हाट्सएप नंबर है 8800191588 00 1915. ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है. हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं. और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है. और पिछले 1 वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है.
1: जी और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से. उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी आपसे सवाल ये रहेगा.
2: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा, इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं. फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम. उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कंपोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं. इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का. एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ. पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है. सेम तरीके से अनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है, मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके।

0: फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है, कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर, पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये अनलाग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है अगर लोगों लैक्टोस इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको, क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हैलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी।
2: इसमें बेसिकली तीन निशान हैं, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमरिक कोड है ये BIS केयर ऐप जो एक BIS के ऐप में है उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा। तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे
1: जी,
2: वो BIS का हैलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका
1: जी, सवाल पूछिए
3: जी। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS पे हम क्या बोलते हैं कंप्लेंट करते या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है
1: जी। अनुपम जी
2: पूछिए। आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फ़ोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहाँ कीजिए, वहाँ आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है
1: जी।
2: आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सिर्फ एक फ़ोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं
1: जी। बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही है जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
0: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है
1: जी।
0: उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं, और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा पॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए, इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और पोस्ट कॉस्ट पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे।
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल।

0: इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियां उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है।
0: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
2: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कंस्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं आजकल, हम बताते हैं मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए। सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में चार सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच करना।
1: जी कविता जी, समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं रूपक 3 लोक 100 मथुरा न्यारी। लेखक हैं डॉक्टर बसंत, प्रस्तुति उपेंद्र रैना की।
1: ये आकाशवाणी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीपुरी, उज्जैन, इनके जो नाम लेते हैं उनमें मथुरा ही धन्य है। क्यों कि काशी आदि में एक एक कार्य करने से, जैसे काशी में मौत हो जाए तो मोक्ष हो जाती है, अन्य पुरी में किसी में यज्ञोपवीत हो जाने से मुक्ति होती है, उज्जैनी। मथुरा की विशेषता ये है, यहाँ 4 प्रकार से मुक्ति देने वाली इसको शास्त्रों ने माना कि जन्म हो, अथवा यज्ञोपवीत हो, अथवा यहाँ मृत्यु हो, अथवा मृत्यु भी न हो, केवल दाह संस्कार भी हो जाए तो ये मथुरा 4 प्रकार से फल लेने वाली है, जैसी 7 पुरियों में कोई नहीं है। इसी कारण इसे 3 लोक से न्यारी भी कह दिया।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नगर सर्वस्व में चारों धाम तथा सप्तपुरी श्रृंखला के अंतर्गत रूपक 3 लोक 100 मथुरा न्यारी। इस रूपक के लेखक हैं डॉक्टर वसंत यामदग्नि और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर उपेंद्र रैना। तो सुनिए रूपक 3 लोक 100 मथुरा न्यारी।
3: हा हा हा, अलबेली बांसुरी के सरस स्वरों में कैसे

0: अनोखी प्रेम भरी मधु वर्षा है यहाँ। अनंत आकर्षण से रसी बसी, अपने मीठे प्यार में सबको रस विभोर करती, यही तो है सलोने कन्हैया की स्नेहपगी बांसुरी, जो आज इनकी जन्मस्थली मथुरापुरी का मधुमय परिचय दे रही है। स्वयं रस रूप गोपी कृष्ण की कोमल कटि में शोभित लजीली किंकणी और चपल चरणों में मुखरित नूपुरों की झंकार को ये बांसुरी साकार कर रही है। कभी इसी वंशी के मधुर स्वर ने जड़ चेतन को रस विभोर किया था, कभी इसी वंशी के मादक स्वर ने जनमानस के मन मयूरा को सहसा कुहका दिया था। श्रुतियों में रसो वैसा कहकर जिस रस स्वरूप की व्याख्या की गई है, वही तो है बांसुरी वादक ये मनमोहन श्याम सुंदर, जिनके जन्म ने मथुरापुरी को धन्य किया है। आज भारत की मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में इसकी गणना होती है। इतना ही नहीं, अपने स्नेहिल स्वभाव के कारण ही ये नगरी तीनों लोकों से न्यारी भी कही जाती रही है। आइए मथुरापुरी से जुड़े यहाँ के सुप्रसिद्ध पुराण वेत्ता डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी से जाने मथुरापुरी के स्वरूप के संबंध में।
1: मथुरेसी त्रिवर्णीयम त्रयी तो विगरीयसी, मथुरा के तीन अक्षर तीन वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। अजन्मा यज्ञात सजन रजन त्वंच भजति, कपाली पालु स्या सकल जगदिका होते करह। अजन्मा जहाँ जन्म लेता है और जगत के रचयिता ब्रह्मा जहाँ चोरी करती हैं, बसरे चुराती हैं। और तीसरी बात, जो संसार को प्रलय प्रलयंकर भूतनाथ बाबा, वे यहाँ के भूतेश्वर कोतवाल बनकर के इसकी रक्षा करती है। तो इन तीन कारणों से इस मथुरा का नाम मथुरा तीन लोक से न्यारी पड़ गया है।
0: भारत के समस्त तीर्थों में मथुरापुरी को पुराणकार विशेष वंदनीय और अभिनंदनीय मानते हैं। भगवान का निज धाम होने से यह तीर्थों का भी महातीर्थ है। यहाँ का कण कण श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रेम रस से सराबोर है।
2: अहो हि मथुरा धन्या यत्र सन्निहितो हरिहि, सर्वेषं यत्र पापानां प्रवेशो अपि न विद्यते। मथुरायाः परम क्षेत्रं त्रैलेक्य न विद्यते, यस्यां वसाम्यहं देव मथुरायां तु सर्वदा। तीनों लोकों में मथुरा से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि यहां मैं स्वयं सदा निवास करता हूं।
0: धन्य है ये मथुरापुरी जहां पाप का प्रवेश कदापि संभव नहीं। पाप नाशिनी प्रेम प्रदायिनी श्री हरि की इस मथुरापुरी के संबंध में सम्मान्य साहित्यकार डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट का कहना है,
3: मथुरा शब्द का अर्थ ये है कि जो भक्तों के हृदय को प्रेम से मथ दे, मथनात भक्त हृदयम सा मथुरा। मथुरा का दूसरा अर्थ है जो पापों को मथ करके रख दे। मथुरा शब्द में ही मथुरा की संपूर्ण महिमा विराजमान है। वो एक ओर संपूर्ण पापों को दूर करके प्रेम को प्रदान करने वाली है, और आनुषंगिक रूप में जितने भी पाप जितने भी अभिलाषाएं उन अभिलाषाओं को भी पूर्ण करने वाली है। मथुरा को ब्रज वृंदावन रस लीला में प्रवेश का द्वार कहा गया। यद्यपि वह पुरलीला में विराजमान है, परंतु उसे ब्रज के प्रवेश का द्वार कहा गया। अतः जितने भी आचार्य आए उन सभी आचार्यों ने सबसे पहले मथुरा विश्रांत घाट के ऊपर ही स्नान किया, चाहे श्री माधवेंद्रपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नंबारकाचार्य, श्रीमद् वल्लभाचार्य, श्री स्वामी हरदास जी,

0: श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री नावादास जी, श्री गदाधर भट्ट जी और अष्टछाप का जितना भी साहित्य, वह सब मथुरा के साथ में बहुत गहराई के साथ में जुड़ा हुआ है। मथुरा अनेक संस्कृतियों का स्थान रहा है और उनके स्थल भी मथुरा में सहज रूप में देखने को मिलते हैं। मथुरा अनंत अनंत महिमा से युक्त होकर के विराजमान है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की निज शक्ति स्वरूपा होकर के ही विराजमान है। अतः मथुरा की महिमा अन्य सारे तीर्थों की अपेक्षा, सभी पुरियों की अपेक्षा मथुरापुरी की महिमा विशेष है।
1: डॉक्टर अच्युतलाल भट्ट के विचार में
0: दो गुण सबसे अधिक मुख्य हैं, एक तारक और पारक। दूसरा पारक, तारक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और पारक गुण के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये बात विशेष रूप से कही गई कि अन्येषु पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम, मुक्ते प्रार्थ्या हरे भक्ति मथुरायाम तो लभ्यते। अन्य तीर्थों में मुक्ति ही महाफल है, जबकि मथुरा में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है।
1: मथुरा पुरी का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। पुराण ग्रंथों में इस पुरी का नाम मधुरा, महुरा अथवा मधुपुरी भी मिलता है। अर्धचंद्राकार इस नगरी को वाल्मीकि रामायण में मधु असुर द्वारा रक्षित बताया है। मथुरापुरी नगर दीवार से सुरक्षित थी, फल फूलों से लदे भरे उपवनों से सुसज्जित थी। निवासी थे सुंदर सुडौल, निर्भीक और निरोग भव्य भवनों के वे निवासी थे। सभी सचरित्र, सभी प्रसन्नचित्त, इनकी सहनशीलता और जनकल्याणी भावना ने परवर्ती काल में देशी विदेशी विभिन्न राजा महाराजाओं के राजवंशों से प्रभावित विविध संस्कृतियों, धर्म संप्रदायों और मान्यताओं को परम उदारता से अपने में समेटा और जनजीवन के लिए सर्वभाव समन्वय की लोक कल्याणी भूमि पर इन्हें ला खड़ा किया। इसी संबंध में प्रस्तुत हैं सुप्रसिद्ध मनीषियों के कुछ विचार, दर्शन शास्त्र के अध्येता विद्वान डॉक्टर शैलेंद्र नाथ पांडे का मत है।
2: जो संदेश मथुरा से देश विदेश में गया है, वह नव वैष्णववाद का, धार्मिक पुनरुत्थान का और आज के परिप्रेक्ष्य में वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, कृष्णोपासना, कृष्ण के बाल रूप की उपासना, युगलोपासना, इन सब के अलग अलग संप्रदायों के मंदिर हैं। तदनुसार इनकी पूजा उपासना की श्रद्धा की परिपाटी है। वर्ष पर्यंत इनके त्यौहार अलग अलग मनाए जाते हैं। तो ये सब वैष्णव धर्म की विविधता, व्यापकता और उनका सर्वसमावेशी रूप, जो सबको समन्वय में जाति पात के विविध भेदों से ऊपर उठकर उनको आत्मसात करने का आध्यात्मिक संदेश है, उसका केंद्र मथुरा रहा।
1: जी हाँ, इसी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं ब्रज साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफेसर गोविंद शर्मा।
3: श्री कृष्ण काल में मथुरा वैदिक धर्म प्रधान थी, ऐसा समझा जा सकता है। उनके प्रपौत्र बद्रनाव ने यहाँ पर अपने श्री कृष्ण की स्मृति में श्री केशवदेव मंदिर की स्थापना की और ये माना जाता है कि उन्होंने भूतेश्वर महादेव की भी प्रतिष्ठा की। चार देव और चार महादेव उनकी प्रतिष्ठापित हैं। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ शैव और भागवत धर्म बराबर समन्वित रूप से प्रवाहित होते रहे।
1: और आप हैं शिक्षाविद डॉक्टर विनोद बनर्जी।
4: मथुरा में जैनियों ने पूजा गृह निर्माण कराए और बौद्धों ने जो है अनेक संगारामों के निर्माण कराए। वैष्णव मतावलम्बियों ने देव विग्रहों के यहाँ निर्माण कराए और आधुनिक समय में यहाँ पर द्वारिकाधीश एवं कृष्ण जन्मभूमि का जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं उसका भी निर्माण हुआ। ये मथुरा की भूमि एक समन्वय की भूमि है,

0: श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति की। लोक जीवन को उन्होंने यज्ञ की पशु हिंसा से बचाकर गोपालन से जोड़ा। स्वर्ग के देवता इंद्र के स्थान पर ब्रजधारा के देव गोवर्धन की पूजा की। उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के साथ ही समस्त दर्शनों को व्यवहारिक धरातल पर उतारा और गीता के उपदेशक के रूप में एक जीवंत धर्म की स्थापना की और कर्म का संदेश दिया। इन्हीं श्री कृष्ण का एक श्री विग्रह श्री द्वारिकाधीश स्वरूप में मथुरापुरी के केंद्र में विराजित है। इस भव्य मंदिर के निर्माता रहे ग्वालियर के गुजराती सेठ गोकुलदास पारीख यहाँ भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी को प्रतिवर्ष देश विदेश के विभिन्न भागों से वेगवती नदी के प्रवाह की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाओं में जब जनसमूह उमड़ता है तो श्रद्धा और भक्ति का अपार समुद्र आनंद और उल्लास से तरंगायित होने लगता है। जय जयकार के तुमुल नाद से आकाश गूंज उठता है।
1: इस समय यहाँ भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। भक्तों की भीड़ का एक रेला है जो लगता है मानो किसी नदी का एक बांध टूट गया हो और बांध टूटने के बाद जो नदी की गति होती है सैलाब की तरह ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने रंग बिरंगे परिधान ओढ़ रखे हैं, महिलाओं ने पुरुष हाथों से तालियां बजाते चल रहे हैं, कीर्तन करते हुए यहाँ पीड़पाढ़ी ब्राह्मण विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं।
0: वेदों में मथुरापुरी तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्र का यत्र गावो भूरी भृंगा अयासाह के अर्थ में एक गोचर भूमि रहा प्रतीत होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यही भूभाग मधुपुत्र लवण की पराजय के बाद रघुवंश शिरोमणि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के द्वारा एक जनपद के रूप में विकसित हुआ। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उत्तर भारत के जिन 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें मध्य देश के मत्स्य और शूरसेन जनपदों को विशेष स्थान प्राप्त है। महाराज मनु ने इन जनपदों को ब्रह्मर्षि देश कहते हुए इन्हें आदर्श और सभ्यता में सर्वोपरि माना है। यही शूरसेन जनपद बाद में मथुरा मंडल नाम से विख्यात हुआ। ईसा पूर्व 6 शताब्दी में मथुरापुरी अवंती राजघराने से जुड़ी और यहाँ अवंती के राजा प्रद्योत के दौहित्र अवंती पुत्र का राज स्थापित हुआ। ये अवंती पुत्र महाकात्यायन के उपदेश से बौद्ध बने। दिव्यावदान के अनुसार भगवान बुद्ध भी मथुरापुरी में पधारे और उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आनंद को मथुरा का महत्व बताते हुए इसे भारत का आदि गणराज्य कहा। मौर्य काल में इस नगरी का बौद्ध धर्म से और भी निकट का संबंध बना। शोणवासी बौद्ध आचार्य ने यहाँ नटभट विहार स्थापित किया। इन्हीं के शिष्य मथुरा निवासी उपगुप्त ने सम्राट अशोक के हिंसा से उफनते हृदय को शांत करने के लिए उसे बौद्ध बनाया। मथुरा में अशोक निर्मित अनेक बौद्ध स्तूपों का उल्लेख चीनी यात्री शुआन चुआंग ने किया है। फाहियान द्वारा वर्णित मथुरा में 20 बौद्ध संगारामों और उनमें निवास करने वाले 3000 भिक्षुओं की सूचना मिलती है। कुषाण काल के समय की बनी कलात्मक बौद्ध मूर्तियां मथुरापुरी की धार्मिक उदारता की परिचायक हैं। यहाँ की बहुमूल्य पुरा संपदा आज मथुरा की धरोहर बन चुकी है। इसी संदर्भ को रूपायित कर रहे हैं इतिहासविद डॉक्टर वी के शर्मा।
2: भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति ईसा से 1 शताब्दी बाद मथुरा नगर के अंदर ही बनी। जैन धर्म अनीश्वरवादी धर्म है, इसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हड़प्पा की सभ्यता के बाद प्राचीनतम जो भारत में मूर्ति मिली हैं वो जैन मूर्तियां हैं। ये मथुरा की यक्ष मूर्ति जो कि ईसा से 3 शताब्दी पूर्व की मूर्ति है,

0: उसी के अनुकरण पर पटना के पास लोहानीपुर नामक स्थान में एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति बनी और उसके बाद मथुरा नगर के अंदर भी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बननी शुरू हुई। तो मथुरा जिले में सबसे पहली मूर्तियां हिंदू और जैन मूर्तियां हैं जो ईसा से दूसरी शताब्दी पहले की हैं, और जो बौद्ध धर्म की मथुरा में निर्मित मूर्तियां हैं वो पहली शताब्दी की मूर्ति हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति। तो इस तरीके से मथुरा में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का जो निर्माण प्रारंभ हुआ वो लगभग 500 साल तक यहां पर चलता रहा। तो मथुरा में मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली का जन्म हुआ जिसे मथुरा कला या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, और मूर्ति कला की इस शैली ने भारत की समकालीन मूर्ति कला को ही नहीं बल्कि एशिया के अनेक देशों की मूर्ति कला को प्रभावित किया।
1: उदारमना मथुरापुरी की स्नेह वत्सला गोद में विभिन्न धर्म संप्रदायों को सदा से प्यार दुलार मिला है। भागवत धर्म की सर्वजन हित भावना ने यहाँ सबको समेटा है और समन्वय की धारा पर सबको समान आधार दिया है। मथुरा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जिस प्रकार एक उर्वरक भूमि रही है, उसी प्रकार जैन धर्म भी यहाँ भली भांति फला फूला है। जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव भागवत धर्म के अवतारों में गिने गए हैं। सातवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का विहार मथुरा में हुआ। 22वें तीर्थंकर नैमिनाथ को तो जैन पुराणों में कृष्ण भ्राता ही माना गया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने मथुरापुरी को अपने आगमन से धन्य किया। कैवल्य ज्ञानी जम्मू स्वामी का सिद्ध क्षेत्र मथुरा का विशाल जैन स्मारक है। इसी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर शैलेंद्रनाथ पांडे।
2: मथुरा पुराकाल से अपने वैभव के लिए विख्यात रही है। निस्संदेह कृष्ण के आविर्भाव काल में जैसे रथों, महलों, गुप्तचरों, कारागार, सड़कों, इन सब का वर्णन है, उससे प्रतीत होता है कि यह नगरी निस्संदेह उस युग में कीर्तिमान रही होगी। इसका विवरण हमें भारतीय संस्कृत ग्रंथों रामायण, महाभारत, गर्ग संहिता एवं पुराणों में उपलब्ध होता है, किंतु और आगे चलें तो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ग्रीक साहित्य तथा अन्य प्राचीन सूत्रों में भी मथुरा की महिमा का उल्लेख प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ बृहत्कल्प सूत्र भाष्य में साध्वियों तथा श्राविकाओं का उल्लेख है। विविध तीर्थ कल्प में जैन सूत्रों की चर्चा है। असल में महावीर के मोक्ष के 1300 वर्ष बाद 750 सेंचुरी एडी में बप्प भट्ट नामक शासक ने 84 एणिक अर्थात स्तूप बनवाए। आज भी मथुरा में कंकाली टीले के पास 84 टीला है जो दिगंबर जैनों का प्रसिद्ध धाम है।
1: पुरातात्विक संपदा की दृष्टि से मथुरापुरी का आज भी बहुत बड़ा महत्व है, एक लेखा जोखा दे रहे हैं डॉक्टर वी के शर्मा।
0: मथुरा में खुदाइयों का सिलसिला 1853 ईस्वी में शुरू हुआ और 1853 से लेकर 1979 ईस्वी तक मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों और मथुरा जिले के अन्य स्थानों में जो खुदाइयां हुई उनसे हमें भारी संख्या में मूर्तियां, भवनों के अंश, पकी मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं, इसके अतिरिक्त बहुत से अभिलेख यानी खुदे हुए लेख जो कि मूर्तियों के ऊपर या शिलापट्टों के ऊपर और अन्य वस्तुओं के ऊपर खुदे हुए लेख हैं, इन अभिलेखों आदि से हमें मथुरा के इतिहास की जानकारी के लिए बहुमूल्य स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो इन पुरातात्विक सामग्री में मूर्तियों से हमें मथुरा के तत्कालीन सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन की जानकारी हुई है। सिक्कों से भी हमें राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हुई है, आर्थिक जीवन की भी जानकारी हुई है। इसी तरीके से

0: भवनों के अंश से हमको स्थापत्य कला की जानकारी हुई है, मूर्तियों से हमें मूर्ति कला की भी जानकारी प्राप्त हुई है। तो इन स्रोतों यानी पुरातात्विक स्रोतों यानी खुदाई द्वारा उपलब्ध सामग्री के बिना अब से लगभग 2000 वर्ष का इतिहास या 1500 वर्ष का इतिहास मथुरा का लिखना संभव ही नहीं हो सकता।
1: मथुरा मंदिर देवालयों की विशालपुरी है। अपनी चारों दिशाओं में चार बड़े देवों, पूर्व में विश्रांति देव, पश्चिम में हर देव, दक्षिण में वाराह देव, उत्तर में गोविंद देव को विराजमान करती मथुरा नगरी अपनी मध्यवर्ती कर्णिका पर भगवान केशव देव को शोभायमान किए हुए है। भूतेश्वर इस नगरी के कोतवाल रक्षक हैं। पावन यमुना के किनारे अर्धचंद्राकार बसी मथुरापुरी का मध्यवर्ती घाट विश्राम तीर्थ है। आचार्य वल्लभ और महाप्रभु चैतन्य ने अपनी ब्रज यात्रा में इसी यमुना घाट पर स्नान किया था। इसके दक्षिण और उत्तर भागों में 12-12 सुंदर कलात्मक घाट हैं। इन घाटों तथा समीपवर्ती क्षेत्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग से संबंधित अनेक देव विग्रह विविध मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ भूतेश्वर, रंगेश्वर, गलतेश्वर, गोकर्णेश्वर, वीरभद्रेश्वर, रत्नेश्वर आदि महादेव तथा महाविद्या, कंकाली, मथुरा देवी, अन्नपूर्णा आदि देवियाँ और दशभुजी विशाल गणेश, यहाँ की पंच देवोपासना तथा यक्ष, नाग और अन्य धर्मों से संबंधित पूजा स्थलियाँ मथुरापुरी की उदार उपासना की प्रतीक है। मथुरापुरी में निर्मित केशव देव मंदिर के ध्वंस और निर्माण की भी एक लंबी कहानी है। कृष्ण प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा स्थापित इस देव प्रतिमा का मंदिर क्रूरता तथा धर्मांधता का अनेक बार शिकार हुआ। समय समय पर नवनिर्मित भवन की विशालता, भव्यता, पच्चीकारी, अलंकरण और कलाकारिता की बर्बादी का वर्णन अल उत्वी, फरिश्ता, ट्रेवनियर, मनुची तथा सुजान राय खत्री आदि इतिहास लेखकों ने किया है। इस देवालय का अंतिम और आधुनिक स्वरूप महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से निर्मित हुआ और अब यह सन 1951 में बने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की देखरेख में सुव्यवस्थित है। जन्माष्टमी और फागुनी फुहारों के बीच होली पर इसकी शोभा देखते ही बनती है। उड़त गुलाल लाल भाई बद्रा के बीच मथुरा की इंद्रधनुष होली में प्रतिवर्ष अपार जनसमूह यहाँ उमड़ता है।

0: अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक परिवेश के साथ साथ मथुरापुरी में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, वाद्य और गायन कला, तुलसी कंठी माला और मुकुट श्रृंगार निर्माण कला, वस्त्र छपाई तथा आभूषण निर्माण कला, मिष्ठान निर्माण कला, पेड़ा खुरचन आदि यहाँ आने जाने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहे हैं। यहाँ का खान पान अनुपम और अनूठा है। आइए मिले तोता गुरु चतुर्वेदी से।
1: सवेरे ही उठ करके निकले तो सीधे यमुना जी पहुँचे। यमुना जी में जाके स्नान करके, भजन पूजन करके, बाई के पड़ोस में द्वारकाधीश राजा धीराज प्रभु हैं। उन राजा धीराज को दर्शन करने के बाद में वहाँ से फूल पत्ती लेकर के जो चले, जो गर्मा गर्म जलेबी और कचौड़ी, ये मथुरा की प्रसिद्ध है महाराज, तो दोनों में लेकर के जलेबी कचौड़ी को नाश्ता कलेव करके ताके बाद घर पहुंचे। ठाकुर जी की पूजा सेवा हुए, ठाकुर जी को भोग लग के जब थाली सामने आवे, बाबा चावल भी है, दाल भी है, कड़ी भी है, खीर भी है, पापड़ भी है, अचार भी है महाराज। या प्रकार ठाकुर जी के प्रसाद को पाए करके बड़ो आनंद आवे।
0: मथुरापुरी में पर्यटन के विकास की अनेक संभावनाएं हैं। सदियों से यहाँ आचार्य संतों, भक्त दर्शकों तथा विदेशी पर्यटकों का पदार्पण होता आया है और आज भी यह क्रम जारी है। इसी संदर्भ में विचार व्यक्त

0: करते हुए ब्रज के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री मोहन स्वरूप भाटिया।
1: धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से ब्रज क्षेत्र के प्रति सारे देश का आकर्षण रहा है। यहाँ राधा कृष्ण की लीला स्थली को दरस परस करने के लिए बड़ी संख्या में हर वर्ष लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जन्माष्टमी पर सावन के हिंडोलों के दर्शन करने के लिए, यम द्वितीया का स्नान करने के लिए, रंग रंगीली होली देखने के लिए, लठामार होली देखने के लिए। पर्यटन का यहाँ बड़ा आयाम है, बहुत ही संभावनाएं हैं। रासलीला, नौटंकी या लोक संगीत और लोक नाटकी जो ब्रज क्षेत्र की विधाएं रही हैं, वे हमारी बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं और इन विधाओं ने सारे देश को भावात्मक एकता का एक संदेश दिया है।
2: न विद्यते च पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे समानं मथुराया हि प्रियं मम वसुंधरे अहो मधुपुरी धन्या स्वर्गादपि गरीयसी सा रम्या च सुशस्ता च जन्मभूमिस्तथा मम। पाताल अंतरिक्ष, भूमि से ऊपर स्वर्गादपि लोक तथा भूलोक में मथुरा के समान कोई भी प्रिय तीर्थ नहीं है। वो अत्यंत रम्य प्रशस्त मेरी जन्मभूमि है। मथुरापुरी में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो अजन्मा भी कहे जाते हैं। अजन्मा का जन्म होना निश्चित ही न्यारी सी बात है। शायद इसीलिए ये मथुरापुरी तीनों लोकों से न्यारी कही जाती रही है।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नगर सर्वस्व में चारों धाम तथा सप्तपुरी श्रृंखला के अंतर्गत रूपक तीन लोकसों मथुरा न्यारी। आलेख था डॉक्टर वसंत यामदग्नी का और प्रस्तुति डॉक्टर उपेंद्र रैना की। निवेदिका थी श्रीमती अंजू सूद। विशेष सहयोगी थे श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतिकरण सहायक डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। तकनीकी सहयोग था शिव कुमार पाठक का। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी मथुरा द्वारा तैयार किया गया ये रूपक आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान का ख्याल गायन। पहले प्रस्तुत है ख्याल गायन राग सावनी कल्याण में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान का ख्याल गायन। अभी आपने सुना राग सावनी कल्याण में ख्याल गायन, और आइए आप सुनते हैं राग धानी में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे इनायत हुसैन खान का ख्याल गायन। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह

रावत, राम माधव, वैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हिमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधी धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।